आठ पहर गुण गायण रहाओ। साधु तूर करो नित मजन, सब किल विख पाप गवायण, पूर्ण पूर्ण रहे कृपा निद, घट घट दिष्ट समायण। जाप ताप कोट लख पूजा, हर सिमरन तुल ना लायण, दोए कर जोड़ नानक दान मांगे, तेरे दासन दा दसायण। नट महला पंजवा, मेरा सर्वस नाम निदान, कर कृपा साधु संग मिलियो, सतगुर दीनो दान रहाओ। सुखदाता दुख पंजन हारा, गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान, काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने, बिनस्यो मूड अभमान। क्या गुण तेरे आख वखाना, प्रभयंत्र जामी जान, चरण कमल सरण सुख सागर, नानक सद कुर्बान। नट महला पंजवा, हाँ वार वार जाऊं गुर गोपाल रहाओ। मोहे निर्गुण तुम पूर्ण दाते, दीना ना दयाल, उठत बैठत सोवत जागत, जी प्राण तन माल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, नानक दर्शन हाल। नट पड़ताल महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। को है मेरो साजन मीत, हर नाम सुनावै नीत, बिनसै दुख विपरीत, सब अर्पो मंतन जीत रहाओ। कोई विरला अपन कीत, संग चरण कमल मन सीत, कर कृपा हर जस दीत, हर पाज जन्म पदार्थ जीत। कोट पतत होहे पुनीत, नानक दास बल बल कीत। नट अष्टपदियां महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम मेरे मंतन नाम आधारे, खिन पल रह न सको बिन सेवा, मैं गुरमत नाम सुमारे रहाओ। हर हर हर हर हर मन त्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पहे प्रभ ठाकर, गुर के शब्द सवारे। मधसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकर अगम अपारे, एक बिनो बेनती करो गुर आगै, मैं साधु चरण पखारे। सहस नेत्र नेत्र है प्रभ कहो, प्रभ एको पुरख निरारे, सहस मूर्त एको प्रभ ठाकर, प्रभ एको गुरमत तारे। गुरमत नाम दमोदर पाया, हर हर नाम उरतारे, हर हर कथा बनी अत मीठी, ज्यो गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे, अत फीके लोभ बेकारे, जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अनरस साध बिसारे। गुरमत राम नाम तन पाया, सुन कहत्या पाप निवारे। धर्म राय जम नेड़ ना आवे, मेरे ठाकुर के जन प्यारे, सास सास सास है जेते, मैं गुरमत नाम समारे। सास सास जाए ना मैं बिन, सो बिरथा सास बेकारे। कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरणी, मोको हरजन मिल प्यारे। नानक दासन दास कहत है, हम दासन के पनिहारे। नट महला चौथा, राम हम पाथर निर्गुणियारे, कृपा कृपा कर गुरु मिलाए, हम पहन शब्द गुर तारे रहाओ। सतगुर नाम दृढ़ा यत मीठा, मैला गर्म लगारे, ना मैं सुरत वजी है दय दसो, हर मुस्की मुसक गंधारे। तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी, गुरनीके बचन समारे, गावत गावत हर गुण गाए, गुण गावत गुर निस्तारे। बबेक गुरु गुरु समदर्शी, तिस मिलिय संको तारे, सतगुर मिलिया परम पद पाया, हो सतगुर कै बलिहारे। पाखंड पाखंड कर कर भरमे, लोभ पाखंड जग बुरियारे, हलत पलत दुखदाई होवै, जमकाल खड़ा सिर मारे। उगवै दिन सियाल जल संभालै, बिख माया के बिस्थारे, आई रहन पया सुपनंतर, बिख सुपने पी दुख सारे। कलर खेत लै कूड़ जमाया, सब कूड़ै के खलवारे, साग तनार सब पुख पुखाने, दर ठांडे जम जंदारे। मनमुख कर्ज चढ़िया बिख पारी, उतरे शब्द विचारे, जितने कर्ज कर्ज के मंगिए, कर सेवक पग लगवारे। जगन्नाथ सब जंतर उपाए,
ਨੱਕ ਖੀਨੀ ਸਭ ਨੱਥ ਹਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਖਿੰਚੈ ਤਿਵ ਚੱਲੀਐ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਰਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੱਜਨ ਹੈ ਨੀਕੋ, ਮਿਲ ਕਰਮਲ ਪਾਪ ਉਤਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ ਸੂਬਾ ਗਨ ਕੋ ਧਾਰੇ, ਪਰਸਨ ਪਰਸ ਭਏ ਕੁਬਜਾ ਕਉ, ਲੈ ਬੈ ਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ। ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਕੀਨੀ, ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਕੈ ਮਨ ਭਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬੇਦਾਰੇ। ਮਾਨੁਖ ਕਥੈ ਕਥ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ, ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਵੈ, ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਬ ਲਗ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਬਤ, ਤਬ ਲਗ ਕਿਛ ਨਾ ਸੁਮਾਰੇ। ਜਬ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਅੱਗ ਲਗਾਨੀ, ਕੱਢ ਕੂਪ ਕੱਢੈ ਪਨਿਹਾਰੇ, ਸਾਗਰ ਸਿਉਮਨ ਮੇਲ ਨਾ ਕਰੀਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਕਤ ਬਚਨ ਵਿਸ਼ੂਆ ਜਿਉਂ ਡਸੀਐ, ਤਜ ਸਾਕਤ ਪਰੈ ਪਰਾਰੇ। ਲਗ ਲਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਲਗ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪਰਚੂਨ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਰਸ ਗਾਵੇ

क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर सरन प्रभु रखवारे। ज्यो कुंचर तंदुऐ पकड़ चलायो कर उपर कड निस्तारे। रहाओ प्रभ के सेवक बहुत अत नीके मन सरदा कर हर तारे। मेरे प्रभ सरदा भगत मन भावै जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागै सब देखै ब्रह्म पसारे। एक पुरख एक नदरी आवै सब एका नदर निहारे। हर प्रभ ठाकर रव्या सब ठाई सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवै विच पाथर कीरे कारे। अंतरवास बहुत मुस्काई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारे। बन बन ढूंढ ढूंढ फिर थाकी गुरपूरे कर निस्तारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे। ज्यों जन चंद्रहांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लुकी जारे। प्रभ को जन अंतर रिद लोचै प्रभ जन के सास निहारे। कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे। अपने आपे आप प्रभ ठाकर प्रभ आपे श्रिट सवारे। जन नानके आपे आप

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा कर।

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया हम राख राख दीन तेरे हर सन हर प्रब आया शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छलन आया प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख ली उतराया हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया पौ जन मरण निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया हर हार हर उर तारो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मनो राम नाम सुखदाता सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले हर प्रभ जाता दुरमत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिनी हर प्रपाया तिन पूछो हर की बाता पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता लिलाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंतन राता हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब के लिख पाप गवाता।

गया सो जो बनो धन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, भणत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुपागा, गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ। मां लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया, पिए ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाओ। लूण हरामी नानक लाला, बख्शै तुद वडियाई, आ जुगा दया पदाता, तुद बिन मुक्त ना पाई।

बाद जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलो भगति पाए तरे भगत वचल हर नाम किरतार्थ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे ध्रुव प्रहलाद बिदरदासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ भगत जना उदरे नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोह गए चमरे गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किल बिख पाप टरे जो जो नाम जपै अपराधी सब तिन के दोख पर हरे बेसवा रवत अजामल उदरयो मुख बोले नारायण नर हरे नाम जपत उग्रसैन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे जन कौ आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे जन नानक हर कृपा तारी उर धरयो नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समाध जपयो लिवलाई साधक मुन जपया जति सती संतोखी त्याया मुख इंद्राद करव्या सरन परे जपयो ते पाए गुरमुख पार पाया मेरे मन नाम जप तरिया तन्ना जट बालमीक बटवारा गुरमुख पार पाया रहाओ। सुरनर गण गंधर्वे जपयो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्मै देवी जपयो मुख हर हर नाम जपया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस ते आयो हर जपते अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसया ते गुरमुख पार पया अंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया गुरतार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया मारू महला चौथा कर तीजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम निदान लै गुरमत हर पत पाए हलत पलत नाल चलदा हरियंते ले छाए जिथे अवकट गलियां पीड़ियां तिथे हर हर मुक्त कराए मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम दृढ़ाए मेरा मात पिता सुत बंद पो मैं हर बिने अवर नाम आए रहाओ मैं हर बिर ही हर नाम है कोई आन मिलावे माए तिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए सतगुर पुरख दयाल।

हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम ते आई हर कीर्त गुरमुख चाख तन धरती हर बीजी है विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुरपूरे हर अस चाख मन मुख तृष्णा भर रहे मन आसा दह दिस बहु लाख बिन नामै त्रिग जीवन दे विच विष्टा मन मुख राख होए आवै जाए पवाई है बो जोनी दुर्गंध पाख त्राहे त्राहे शरणागति हर दया तार प्रभ राख संत संगत में लाभ कर हर नाम मिले पत साख हर हर नाम तन पाया जन नानक गुरमत पाख मारू महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर भगत भरे भंडारा गुरमुख राम करे निस्तारा जिसनों कृपा करे।

अड़े जप हर हर नाम छड़ावै जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचै हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरा मन भावै जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी हर सिमरत मन लै जावै जियो माया मोह बिखम है भारी क्यों तरिया दुत्तर संसारी सतगुर बोहिथ दे प्रभ साचा जप हर हर पार लंघावै जियो तू सरबत्र तेरा सब कोई जो तू करै सोई प्रभ होई जन नानक गुण गावै बेचारा हर पावै हर थाए पावै जियो मारू महला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विख काटै हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चलद्या नाल सिखाई जियो जिसनो कृपा करे सो त्यावै नित हर जप जापै जप हर सुख पावै गुर प्रसादी हर रस आवै जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ निरपौ निरंकार सतनाम जग में सृष्टि उत्तम काम दुश्मन दूत जमकाल ठेहे मारो हर सेवक नेड़ न जाई जियो जिस उपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया

एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म आकारथ हरे नर ऐसी करै अयानथ तज सारंग धर भ्रम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संगसानथ रहाओ धरणी धर त्याग नीच कुल सेवै हाँ हाँ करत बिहावथ फोकट कर्म करै अज्ञानी मन मुख अंध कहावत सत होता असत कर मानिया जो बिनसत सो निचर जानथ पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक नाम तरानथ गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ मारू महला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए विसार हर जियो बिखै भोगै तबत थम गल लाए रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दप तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ बेकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए महासागर समुद्र लंघना पार ना पर ना जाए काम क्रोध लो मोहे ब्यापे नेत्र रखे फिराए शीश उठावन ना

पूर्ण अत्र त्याग आए सहज समाद सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया। मारू महला पंजवा कर छेवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्याग गुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखाना हर भजन तत् ज्ञान मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेहे पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेहे जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में है हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत ए है मारू महला पंजवा। पुरख पूर्ण सुख है दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल रीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद मारू महला पंजवा। चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो ना हार मारू महला पंजवा। तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसे प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो रहाओ। नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू महला पंजवा। प्रतपाल माता उदर राखै लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राखै बूद बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसे बूझ जिंतु किया प्रभ करण करण एक रहाओ। चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा। पतत पावन

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवां कर सतवां एको ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरों ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथे खसम छड़ाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवां वैदो ना वाई पहनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम है भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कहो सिमर अजा मल उदरियो गन का हूं गत पाई रहाओ पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई कहो नानक मैं ही परोसै गई आन सरनाई मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई सगल जन्म बिख्यन स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट मैं को अब होत सहाई जो संपत्ति अपनी करमानी छन मैं पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ जम को डंड पर्यो सिर ऊपर तब सुभ तै जाग्यो कहां हो तो अब कै पछताए छूटत नाहन भाग्यो एह चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनुराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस

मारू महला नावा, हर को नाम सदा सुखदाई, जा को सिमर अजा मल उदरियो, गन का हूं गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुदयाई, ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई। जेह नर जस कृपा निदगायो, ताको पयो सहाई, कहो नानक मैं ही भरोसे गही आन सरनाई। मारू महला नावा, अब मैं कहा करो री माई, सगल जन्म बिख्यान स्यों खोया, सिमरियो नाहे कनाई रहाओ। काल फास जब घर मैं मिली, ते सुध सब बिसराई, राम नाम बिन या संकट मैं को अब होत सहाई। जो संपत्ति अपनी कर मानी, शन में पई पराई, कहो नानक यह सोच रही मानो, हर जस कबहू ना गाई। मारू महला नावा, माई मैं मन को मानना त्याग्यो, माया के मत जन्म से रायो, राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड परयो सिरी ऊपर, तब सो बत्ते जाग्यो, कहां होते अब कै पछताए, छूटत नाहन पाग्यो। ए चिंता उपजी घट मैं जब, गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जाओ प्रभ जस मैं पाग्यो। मारू अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वेद पुराण कथे सुने हारे मुनिया ने का, अड़सठ तीर्थ बहु कणा, प्रम था के पेखा, साचो साहब निर्मलो मन मान एका। तू अजरावर अमर तू सब चलन हारी, नाम रसायन पाए लै पर हर दुख पारी रहाओ। हर पढ़िया हर बुझिया गुरमति नाम उदारा, गुरपूरे पूरी मत है पूरे शब्द बिचारा। अड़सठ तीर्थ नाम हर, अड़सठ तीर्थ हर नाम है किलविख काटन हारा। जल बिलोवे जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना, गुरमति दद मथी है अमृत पाइये नाम निदाना। मनमुख तत न जाननी पशु महे समाना, हाँ मैं मेरा मरी मर मर जमै वारो वार, गुर कै शब्दे जे मरे फिर मरन दूजी वार। गुरमति जग जीवन मन वसै सब को लियो धारण हार, सच्चा वखर नाम है सच्चा वापारा। लाहा नाम संसार है गुरमति विचारा, दूजे पाए कार कमावणी ने तोटा संसारा। साची संगत थान सच सच्चे घर वारा, सच्चा पोजन पाओ सच सच नाम आधारा। सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा। रस भोगण पात साहिया दुख सुख संघारा, मोटा नाव तराई है गले उगण पारा। मानस दात ना हो वही तू दाता सारा, अगवा गोचर तू तनी अवगत अपारा। गुर शब्दी दर जोई है मुक्ते भंडारा, नानक मेल न चुकई साचे वापारा। मारू महला पहला, बिख बोहे था ला दिया दिया समुंद मझार, कंधी दिस ना आवई ना उर वार ना पार। वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल, बाबा जग फाथा महाजाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाओ। सतगुरु है बोहे था शब्द लंघावन हार, तिथे पवन ना पाप को ना जल ना आकार। तिथे सच्चा सच नाए पव जल तारन हार, गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सुलिव लाए। आवा गौण निवारिया ज्योति ज्योत मिलाए, गुरमति सहज उपजै सच्चे रह समाए। सप पिड़ाई पाई है बिख अंतर मन रोस, पूर्व लिखिया पाई है किसनो दीजै दोस। गुरमुख गारड़ जे सुने मने नाओ संतोष, मागर मछ फहाई है कुंडी जल वताए। द्रुमत फाथा फाही है फिर पछोताए, जमन मरण ना सुजई कीर्तना मेटिया जाए। हाँ मैं बिख पाए जग तो पाया शब्द वसै बिख जाए, जरा जोहे ना सकई सच रह लिवलाए। जीवन मुक्त सो आखिया जिस विचो हम मैं जाए, तंदे तावत जग बांधिया ना बूझे विचार। जमन मरण विसारिया मनमुख मुक्त गवार, गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार।
सुहट पिंजर प्रेम कै बोलै बोलनहार सच चुगै अमृत पीऐ उडै ता एका वार गुर मिलै खसम पछाणियै कहो नानक मोख द्वार मारू महला पहला शब्द मरै ता मार मार भागो किस पै जाओ जिस कै डर पै भागीऐ अमृत ता को नाओ मारै राखै एक तू बीजो नाही थाओ बाबा मैं कुचील काचो मतहीन ना बिना को कश नहीं गुरपुर पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुबर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुखी उपजै बिन पागा तन ना है जिनके नाम ना मन वसै से बांधे दुख सहाहे जिनी नाम विसारे आसे कित आए संसार आगे पाछा सुख नहीं गाडे ला देशार विछड़िया मेला नहीं दुखकनो जम द्वार अगे क्या जाना ना है मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए गुरबिंद दाता को नहीं कीमत कहन ना जाए साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख मुखत माने तन खड़ी गुरमुख आखी देख तुद पावै तू मन वसै नदरी करम वसेख भूख प्यासो जे पवै कैथ मांगो दे बीजो सूजै को नहीं मन तन पूर्ण दे जिनकी आतन देख आया वडाई दे नगरी नायक नवतनो बाल कलील अनूप नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतुर स्वरूप ज्योतिष पावै सोथिया तू दीपक तू धूप गीत साध चाखे सुने बाद साध तन रोग सच पावै साचो चवै छूटै सोग वियोग नानक नाम ना विसरै ज्योतिष पावै सो होग मारू महला पहला साची कार कमावनी होर लालच बाद एहो मन सचै मोहया जेवा सच साध बिन नावै को रस नहीं होर चलै बिखलाद ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खसम हमारे ज्यो फरमावै त्यों चला सच लाल प्यारे रहाओ अंदन लाले चाकरी गोले सिर मीरा गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा गुरपुरे सा

बोली माया तारी, कर कर मांगे जग प्रभु दे मन अंधे पतहारी, परम पुलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी, अंतर अगना गुर बिन बुझे बाहर पुअर तापे, गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीन से आपे, निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे, आठ सठ तीर्थ परम गुचे क्यों मल तोपे पापे, शानी खाक विभूत चढ़ाई माया का मग जो है, अंतर बाहरी एक न जाने साच कहे ते शो है, पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत यो है, नाम न जपई क्यों सुख पावे बिन नावे क्यों सो है, मूंड मुड़ाए जटा सिख बांधी मोन रहे अभमाना, मनवा डोले दे दस्तावे बिन रात आत्म ज्ञाना, अमृत छोड़ महा बिख पीवे माया का देवाना, कीर्तना मिटई हुक्म न बूझे पशुआ माहे समाना, हाथ कमंडल कापड़िया मंत्र सना उपजी पारी, स्त्री तज कर काम व्यापिया चित लाया पर नारी, सिख करे कर शब्द ना चीने लंपट है बाजारी, अंतर बिख बाहर ने प्राती ताजम करे खुवारी, सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विचों आप गवाए, शादन भोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए, बकै न बोले खिमा तन संग्रह तामस नाम जलाए, तन गिरी सन्यासी जोगी जे हर चरणी चित लाए, आस निरास रह सन्यासी एक सो लिव लाए, हर रस पीवे ता सांत आवे नी कर ताड़ी लाए, मनुआ ना डोले गुरमुख बुझे तावत वर्ज रहाए, गृह शरीर गुरमति खोजे नाम पदार्थ पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नावरते विचारी, खानी बाणी गगन पताली जनता जोत तुम्हारी, सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी सच नाम उतारी, नाम बिना ने छूट स्नानक साची तर तू तारी, मारू महला पहला मात पिता संजोग उपाए, रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी, सो प्रभ सारे दात करे, संसार भवजल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाईए, अफरे उपार अफार टरे रहाओ, ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो, हरे तू दाता दयाल सवै सिर अहनिस दात समार करे, चार पदार्थ लै जग जन्मया शिव शक्ति करवास धरे, लागी भूख माया मग जो है, मुक्त पदार्थ मोहे खरे करण पलाव करे नहीं पावे, इत्य उत ढूंढत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे, कूड़ कुटंब स्यो प्रीत करे, खावे भोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे, बिन गुर शब्द ना आप पछाणे बिन हर नाम ना काल टरे, जेता मोह हमें कर भूले मेरी मेरी करते शीन खरे, तन तन बिन सहसा सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे, बिरद भया जोबन तन खिसिया कफ कंठ बिरुदो नैनो नीर टरे, चरण रहे कर कंपन लागे सागत राम नारदय हरे, सुरत गई काली हूं तौले किसे ना पावे रखियो करे, बिसरत नाम ऐसे दोख लागे जब मारस मारे नरक खरे, पूर्व जन्म को लेख ना मिटई जन्म मरे का को दोष धरे, बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे, खुशी खुआर पय रस भोगण फोकट कर्म विकार करे, नाम विसार लोभ मूल खोयो सिर धर्म राय का दंड परे, गुरमुख राम नाम गुण गावे जाको हर प्रभ नजर करे, ते निर्मल पुरख परंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे, हर सिमरो गुर बचन समारो संगत हर जन भाव करे, हर जन गुर प्रधान दुआरे नानक तिन जन की रेण हरे, एको अंकार सतगुर प्रसाद मारू काफी महला पहला, कर दूजा आवो वन्यो डुमनी किती मित्र करे, ओ सातन टोई नाल है वाडी क्यों तीरे, ओ
ਮਹਿੰਡਾ ਮਨ ਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ ਖੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀ।

सोई सोहेला पालिया ग्रह राज में नरको दास करो दा बहुविध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण कहलिया जागत सूता परम विगुता बिन गुर मुक्त ना होई है मीता साध संग तुटे हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्यापिया चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने घट घट राम हाली है संसार में सहसा व्यापै अकथ कथा गोचर नहीं जापै जिसे बुझाए सोई बूझै ओह बालक वांगी पाली है छोड़ बह तो छूटै नाही जो सिंचै तो पौ मन माही इस ही मह जिसकी पत राखै तिस साधु चौर ढाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल मानै बुझ हुक्मै दुरमत जाली है जित जित लावै तित तित लगना कर कर वेखै अपने जचना नानके पूर्ण सुखदा ते तू देहता नाम समाली है मारू महला पंजवा बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त्या दोत पया उठ चले ज्यों ज्यों औद विहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजरा ईल फड़े फड़ कुठे दोजग पाए सृजनहार है लेखा मंगै बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन धन छोड़ वंजेसा करण करीम न जातो करता तिल पीड़े जो कहानियां खुस खुस लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल न जानिया जम जम मरै मरै फिर जम्मै बहुत सजाए पया।

आपे पौन पाणी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है ना साकै साचे सुन लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिनस आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्से आपे दे लै पाई है, आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगण स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है, पौन गुरु पाणी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है, खाणी बाणी तुझे समाणी जो दिसै सब आवण जानी, सही साह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल बिकाल पहे देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ महे समाना,

मात पिता कलत्र सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की ना है। मीत सखे के तेजग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही। गुर की सेवा मुक्त परायण, अंधन कीर्तन की ना है। कूड़ छोड़ साचे कौ तावो, जो इच्छो सोई फल पावो। साच वखर के वापारी विरले, लै लाहा सौदा की ना है। हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लह जन पूरे, इउं समदर्शी चीना है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावै, गुर कै शब्द मन को समझावै। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, इउं आत्म रामै लीना है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिपवन सेवक वडो वडेरे। सब तेरी कुदरत तू सिर सरदाता, सब तेरो कारण कीना है। एक दर सेवै दर्द वंजाए, कोई दर गै पहंदे सतगुरु छड़ाए। हाँ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई, जित प्रभ पावो गणत न काई। हाँ मैं

कमावै। अंदले सोजी बूझना काई, लोभ बुरा अहंकारा है। पेर बिन क्या तिस धन सिंगारा, पर पिन राती खसम सारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा है। प्रेत पिंजर में दुख कनेरे, नरक पचै अज्ञान अंधेरे। धर्म राय की बाकी लीजै, जिन हर का नाम विसारा है। सूरज तपै अग्न बिख चाला, आपत पशु मन मुख बेताला। आसा मनसा कूट कमावै, लोग बुरा बुरियारा है। मस्तक भार कलर सिर पारा, क्यों कर भव जल लंघस पारा। सतगुर बोथे आज जुगादी, राम नाम निस्तारा है। पुत्र कलत्र जग हित प्यारा, माया मोह पसरिया पासारा। जम के फाहे सतगुर तोड़े, गुरमुख तत् बिचारा है। कूड़ मुठी चल बौराही, मनमुख दाजै पड़ पड़ पाही। अमृत नाम गुरु वरदाना, नाम जपो सुख सारा है। सतगुर तुठा सच दृढ़ाए, सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए न गड्डी मूले, जे सतगुर रखन हारा है। खेहू खेहे रले तन छीजै, मनमुख पाथर सैल न पीजै। करण पलाव करे बहुतेरे, नरक सुर्ग अवतारा है। माया बिख पोए अंगम नाले, इन दुबदा कर बहुते गाले। सतगुर बाजो प्रीत न उपजै, भगत रते पतियारा है। साकत माया को बहुतावै, नाम विसार कहां सुख पावै। त्रिगुण अंतर खपै खपावै, ना ही पार उतारा है। कूकर सूकर कहिए कूड़े आरा, पाओ कुमरै पाओ पाओ पौहारा। मंतन झूठे कूड़ कमावै, दुर्मत दर गह हारा है। सतगुर मिले ता मनुआ टेक, राम नाम दे सरन परेक। हर तन नाम अमोलक देवै, हर जस दर गह प्यारा है। राम नाम साधु सरनाई, सतगुर बचनी गत मित पाई। नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मेल नहारा है। मारू महला पहला, कर रहो रे मन मुगदे आने। राम जपो अंतर गत ध्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, इउं पावो मुग द्वारा है। जिस बिसरिया जम जोहन लागै, सब सब सुख जाहे दुखा फुनिया गै। राम नाम जप गुरमुख जियड़े, एहो परम तत् विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। अहनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संयम सारा है। राम नाम गुरबचनी बोलो, संत सभा में एहो रस टोलो। गुरमत खोज लहो कार्य अपना, बहुना गर्व मजारा है। सच तीर्थ नावो हर गुण गावो, तत् विचारो हर लिव लावो। अंत काल जम जोहे ना साकै, हर बोलो राम प्यारा है। सतगुर पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाणा। जिसको सतगुर वेर मिलाए, ते चूका जम पै पारा है। पंच तत् मिल काया कीनी, तिस मैं राम रतन लै चीनी। आत्म राम राम है आत्म, हर पाइय शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर सरनाई। आत्म चीन प्रात्म चीनो, गुर संगत ओ निस्तारा है। साकत कूड़ कपट मैं टेका, अहनस निंदा करै अनेका। बिन सिमरन आवै फुन जावै, गर्भ जोनी नरक मझारा है। साकत जम की कान ना चूकै, जम का डंड न कब हूं मुकै। बाकी धर्म राय की लीजै, सिर अफरियो पार अफारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पवजल परिया। बिन गुर पार ना पावै कोई, हर जपिया पार उतारा है। गुर की दात ना मिटै कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई।
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨੇਣ ਨਾ ਆਵੈ, ਮਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅਪਰਿਆ ਪਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਪੂਲੇ ਆਵੋ ਜਾਵੋ, ਜਨਮ ਮਰੋ ਫਨ ਪਾਪ ਕਮਾਵੋ, ਸਾਗਤ ਮੂੜਾ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤੈ, ਦੁਖ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨਦਾ ਤੈ ਦੀਏ, ਕਿਸ ਕੋ ਦੋਸ ਦੇਹ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਹ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਕਿਆ ਲੇ ਚਾਲੇ, ਬਿਖਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਰ ਬੇਕਾਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਅਕਥ ਕਥੋ ਮਨ ਮਨੈ ਸਮਾਈ, ਉਠ ਚਲਤਾ ਠਾਕ ਰੱਖੋ ਘਰੇ ਆਪਣੇ, ਦੋ ਕਾਟੇ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਓਟ ਪਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲਿਵ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਤੀ ਉਤਮ, ਹਰ ਬਖਸੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਮਾਰੀ।

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग वियोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पय निराले, गुरमुख शीर्ष नहा हे। नीके साचे के वापारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चे ओ महा हे। काची समी तोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रास सलामत, चूका जमका फाहा हे। सबको बोले अपन भाणे, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुहता है। दुख में जन्मे

बाज कला आडान रहाया। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए माया मोह वधाईंदा। विरले कहो गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया। खंड ब्रह्मांड पाताल आरंभे गुप्तो प्रगटी आएंदा। ताका अंत न जाने कोई पूरे गुरते सोजी होई। नानक साच रते बिस्मादी बिस्म पै गुण गाएंदा। मारू महला पहला आपे आपो पाए निराला। साचा थान की ओ दयाला। पौन पानी अग्नि का बंधन काया कोट रचाएंदा। नौ कर थापे थापन हार है दसवे वासा लख्या पार है। सायर सप्त भरे जल निर्मल गुरमुख मैल न लाएंदा। राव सस दीपक जोत सबाई आपे कर वेखे वडियाई। ज्योत स्वरूप सदा सुखदाता सच्चे सोभा पाएंदा। गढ़ में हाट पटन वापारा पूरे तोल तोले वनजारा। आपे रतन वसाहे लेवै आपे कीमत पाएंदा। कीमत पाई पावन हार है वे प्रवाह पूरे भंडार है। सर्ब कलाले आपे रहा गुरमुख सह बुझाएंदा। नदर करे पूरा गुर पेट जम जंदार न मारे फेट। ज्यो जल अंतर कमल बिगासी आपे बिकसते आएंदा। आपे वरख अमृत तारा रतन जिवे हर लालिया पारा। सतगुर मिले ता पूरा पाईए प्रेम पदार्थ पाएंदा। प्रेम पदार्थ लह अमोलो कभी ना काटस पूरा तोलो। सच्चे कावा पारी होवे सच्चो सौदा पाएंदा। सच्चा सौदा विरला को पाए पूरा सतगुर मिले मिलाए। गुरमुख होए सो हुक्म पछाणे माने हुक्म समाएंदा। हुक्मे आया हुक्म समाया हुक्मे दिसै जगतो पाया। हुक्मे सुर्ग मच पया ला हुक्मे कला रहाएंदा। हुक्मे धरती तौल सिर पारंग हुक्मे पौन पानी गहणारंग। हुक्मे शिव शक्ति करवासा हुक्मे खेल खिलाएंदा। हुक्मे आडाणे आगासी हुक्मे जल थल त्रिपवन वासी। हुक्मे सास गिरास सदा फुन हुक्मे देख दिखाएंदा। हुक्म उपाय दस अवतारा देव दानव या गणत्या पारा। माने हुक्म सो दर गए पैजै साच में लाए समाएंदा। हुक्मे जोग शक्ति गोदारे हुक्मे सिद्ध साधक विचारे। आप नाथ नथी सब जाकी बक्से मुक्त कराएंदा। काया कोट गड़े में राजा नेव खवास पला दरवाजा। मिथ्या लोभ नाही करवासा लापा पछताएंदा। सत संतोख नगर मैं कारी जत सत संजम सरन मोरारी। नानक सहज मिले जग जीवन गुर सबदी पत पाएंदा। मारू महला पहला सुन कला अपरंपर धारी आप निरालम अप्रियापारी। आपे कुदरत कर कर देखे सुनो सुन उपाएंदा। पौन पानी सुनै ते साजे सृष्टि उपाए काया गणराजे। अग्न पानी जियो जोत तुम्हारी सुन्ने कला रहाएंदा। सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए सुन्ने वरते जुग सबाए। इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिए परम चुकाएंदा। सुनो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे। तित सतसर मनुआ गुरमुख नावे फिर बाहुड़ जोन ना पाएंदा। सुनो चंद

दुर्मत सब देखोई, एक समय प्रभ एक समाना, अपना रंग सदराता है, काया कमल है कुमलाना, मन मुख शब्द ना बुझे आना, गुर प्रसादी काया खोजे, पाए जग जीवन दाता है, कोट गही के पाप निवारे, सदा हर जियो रखे और तारे, जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग में जी ठहराता है, मन मुख ज्ञान कथे ना होई, फिर आवे ठौर ना कोई, गुरमुख ज्ञान सदा साला है, जुजगु एको जाता है, मन मुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाए, गुरमुख शब्द वसै मन साचा, सद सेवे सुखदाता है, जै देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब

बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित श्रीरा। बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है। पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई। सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी। साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख एको जाता है। जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए। नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है। मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना। आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है। हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा। जो तुद पावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है। आपे हीरा रतन, आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नगरी तोले तोलो। जी जंत सब शरण तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता है। जिसनो नदर होवै तुर तेरी, मरे न जम्मै चूकै फेरी। साचे गुण गावै दिन राती, जुजगु एको जाता है। माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया। जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है। पाप पुन वरतै संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा। गुरमुख होवै सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता है। कीर्तना कोई मेटनहारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा। पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। माया मोहे हर स्यो चेतना लागे, दूजे पाए घना दुख आगे। मनमुख परम पुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है। हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए। हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है। जिसनो नजर करे सो गुण निद पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए। गुणे अवगुण का

जो तिल कहानी पीड़ाएं दा पूरे भाग गुरसेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल तसने न आवे महल सच्चे सुख पाएंदा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे भाग गुरसेवा लाए तेरे हथ है सब वड़ियाई जिस देवे सो पाएंदा अंदर प्रगास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए ज्ञान रतन सदा कर चानन अज्ञान देर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डूमुए अपागे चलदिया घरदार नजर ना आवे जमदर बांधा दुख पाएंदा बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई ज्ञानी त्यानी पूछो कोई सतगुर सेवे तिस मिले वड्याई दर सच्चे सोभा पाएंदा।

किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी है। हर हर नाम जिन्नी सदा ते आया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो तानी है। तू समय वरतै हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय धरी जिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अग्नि उपाय इंद्र में बाधी, सो प्रभ राखे पाई है। जी जंत कौ रिजक संभाहे, करण कारण समराथ्या पाहे, खिन में थापो थापन हारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्व में जिन प्रतपालिया, सास ग्रास हुए संग संभालिया, सदा सदा जपिए सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किश कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता, मात पिता सुत बंध पाई, जिन ए सृष्टि उपाई है। प्रभ आए सरना पव नहीं करना, साध संगत नीचो है तरना, मन बच करम्या राधे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मंत्र में रव्या, जन्म मरण की जोन न पव्या, दुख विनाश की आ सुख डेरा, जा तृप्त रहे आ गाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थांथनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर स्वामी परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तंता, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथाहो अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जंत सहत आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुनो, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है। जय जय कार्य पो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईश, तिस बिन दूजा अवर ना दिस, एका जगत सबाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन दाता, सिमर सिमर जीवै जन तेरे, एक अंकार समाई है। भक्त जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुनी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संगी जोगी नार लपटाणी, उर्ज रही रंग रसमाणी, किरत संजोगी पे एकत्रा, करते भोग बिलासा है। जो पिर करे सो तन तत् मन, पिर तने सिंगार रखे संगन, मिल एकत्र वसै दिन राती, प्रयो दे तने दिलासा है। धन मांगे प्रयो बोबे तावे, जो पावे सो आन दिखावे, एक वस्त को पहुँच ना साके, तन रहती भूख प्यासा है। तन करे बिनो दो कर जोरे, प्रे परदेस ना जाहो वसो कर मोरे, ऐसा बणज करो गृह पीतर, जित उतरे भूख प्यासा है।
सगले कर्म धर्म जुग साधा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पही कृपा नानक सतसंगे, तौ धन पिर आनंद उलासा है, तन अंधी पिर चपरसियाना, पंच तत्कार चन रचाना, जिस वखर को तुम आए हो, सो पायो सतगुर पासा है, तन कह तू वस मैं नाले, प्रे सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हो कित ही ना लेख, वचन देहे छोड़ ना जासा है, फिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओह पारो ठाकरो जिस कान ना शंदा, जिचर रख है तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता उड़ सिदासा है, जाओ प्रे बचन कह तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर पिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासा है, आईया गया पिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया, ऊड़ सिधायो छूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा है, हरे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुर सेव दिन रात सदेरे, बिन सतगुर पचबुए साकत, निगुरे गल जमफासा है, मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मन मुख भोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया, तिस कौन मिटावे जे प्रभ पैराया, सदा आनंद करे आनंदी, जे सिर पाओ पया गल खासा है, हाँ बलिहारी सतगुर पूरे, शरण के दाते बचन के सूरे, ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता, विछड़ ना कत ही जासा है, गुण निदान किश कीम ना पाई, कट कट पूर रहे हो सब ठाई, नानक शरण दीन दुख भंजन, हौरेण तेरे जो दासा है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, करे आनंद आनंदी मेरा, कटकट पूर्ण सिर सिर नबेरा, सिर साहा कै सच्चा साहेब, अवर नाही को दूजा है, हरखवंत अनंत दयाला, प्रगट रहे ओ प्रभ सरब्यो जाला, रूप करे कर वेखै विकसै, आपे ही आप पूजा है, आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा, आपे खेल खिलावै दिन राती, आपे सुन सुन पीजा है, साचा तख्त सच्ची पातशाही, सच खजीना साचा साही, आपे सच तारियो सब साचा, सच्चे सच वर्ती जाहे, सचत पावस सच्चे केरा, साचा थान सदा प्रभ तेरा, सच्ची कुदरत सच्ची बाणी, सच साहेब सुख की जाहे, एको आप तू है वड राजा, हुक्म सच्चे के पूरे काजा, अंतर बाहर सबके जाने, आपे ही आप तीजा है, तू वड रसिया तू वड भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज कर तेरा, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होवे, देह दान सब सह जंत लोवे, टूट ना आवे पूर भंडार, तृप्त रहे आगी जाहे, जाचै सिद्ध साधक बनवासी, जाचै जति सती सुखवासी, एकदा तार सगल है जाचक, देह दान सृष्टि जाहे, करे भगत अर रंग अपारा, खिन मै थापो थापन हारा, पारो तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्श सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने, चतर स्वरूप से आना सोई, जो मन तेरे पावी जाहे, जिस चीत आवै सो वे प्रवाह, जिस चीत आवै सो साचा सहा,
ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਿਸ ਪਹੁ ਕਿਹਾ, ਅਵਰ ਕਹਾ ਕਿਸ ਕੀ ਜਾਹੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈ ਤੂਟਾ ਗੰਡਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ, ਅਮਿਓ ਚੋਲ ਚੋਲ ਪੀ ਜਾਹੇ। ਮਰੈ ਨਾਹੀ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਅਮਰ ਭਇਆ ਅਬਨਾਸੀ ਥੀਵੈ। ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵੈ, ਗੁਰਦੂਰ ਕੀ ਆ ਪਰਮੀ ਜਾਹੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਲਾਗਾ ਪੂਰੇ ਮਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੰਗਾ, ਕਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੀ ਜਾਹੇ। ਬਾਰਹਾ ਕੰਚਨ ਸੁਧ ਕਰਾਇਆ, ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਵਨੀਸ਼ ਚੜਾਇਆ। ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸਰਾਫੀ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਤਾਈ ਜਾਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਮਨ ਭੀ ਜਾਹੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਲਹੇ, ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਗੁਰਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਖਟ ਕਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਸੰਗ ਨਾ ਫਾਸੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ

गुर का सेवक नरक ना जाए, गुर का सेवक पार ब्रह्म ते आए, गुर का सेवक साध संग पाए, गुर करदा नित जी दाना है। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिया, सतगुर भेट हर जस मुख भणिया, कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगह देवै माना है। आगमा गोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक बिगना भगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पुर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सही ध्याना है। गुर मिले है सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले है न जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी समय समाणी, आप सुनी तै आप वखाणी, जिन जिन जपी ते ही सब निस्तरे, तिन पाया ने चलथाना है। सतगुर की महिमा सतगुर जाणै, जोगश करे सो अपन पाणै, साधु धूर जाचै जन तेरे, नानक सतकुरबाना है। मारू सोल हे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, समय वरतै आप निरारा, वर्ण जात चिन्ह कोई, सब हुक्मे सृष्टि उपाएंदा, लख चौरासी जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा, कीता होवै तिस क्या कहियै, गुरमुख नाम पदार्थ लईऐ, जिसे आप भुलाए सोई भूलै, सो बूझै जिसे बुझाएंदा, हर सो का नगरे हो किया, से उबरे जो सतगुर सरणिया, त्रिहो गुणा ते रह निरारा, सो गुरमुख शोभा पाएंदा, अनक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे, करुता बीज बीजे नहीं जन जमै, सब लाहा मूल गवाएंदा, कल युग में कीर्तन परदाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। खंड पताल दीप सब लोवा, सब काल वैसे आप प्रभ किया, निचल एक आप अबनासी, सो निचल जो तसै बुझाएंदा, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठै बो भाती, फिर सरलै सल समाएंदा, एक जाचक मंगै दान द्वारै, जां प्रभावै ता कृपा धारै, देहो दर्स जित मंत्र पतासै, हर कीर्तन मन ठहराएंदा, रूड़ो ठाकुर कितै वस न आवै, हर सो किश करे जे हर क्या संतां पावै, कीता लोड़न सोई करायन, दर फेर न कोई पाएंदा, जिथै औकट आए बंत है प्राणी, तिथै हर त्याईऐ सारंग पाणी, जिथै पुत्र कलत्र ना बेली कोई, तिथै हर आप छडाएंदा, वड्डा साहेब अगमा थाहा, क्यों मिलिया प्रवे प्रवाहा, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पाएंदा, हुक्म बूझै सो सेवक कहियै, बुरा भला दो संसार सही है, हौं मैं जाए तां एको बूझै, सो गुरमुख सहि समाएंदा, हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अति तो दासी, अनक रंग करै बो भाती, जो पिता पूत लाडाएंदा, अगमा गोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिया जा ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पाया तिन जन कहो, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा, तू आपे करता कारण करना, सृष्टि उपाय तरी सब तरना, जन नानक शरण पया हर द्वार, हर भावै लाज रखाएंदा, मारू सोल हे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो दिसै सो एको तू है, बाणी तेरी सरवणी सुनिए,
ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਨਾ ਜਪ ਸਕਾਈ, ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ ਧਾਰਨਾ, ਆਪ ਚਿਤਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਆਪੇ ਆਪਿਆ ਪ੍ਰਭਥੀਆ, ਆਪ ਉਪਾਏ ਰਚਿਓਨ ਪਾਸਾਰਾ, ਆਪੇ ਕਟਕਟ ਸਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਵੜ ਦਰਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਇੱਕ ਕਰਬਾਰੀ।

सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, सदा सदा जाई बलिहारी, दोए कर जोड़ सिमरो दिन राती, मेरे स्वामी अगम अपारणा, तुद बिन दूजे के सालाही, एको एक जपी मन माही, हुक्म बूझ जन पै निहाला, ए भगता की कहलना, गुर उपदेश जपिए मन साचा, गुर उपदेश राम रंग राचा, गुर उपदेश तुटै सब बंधन, एहो परम हो पर जालना, जय राखै सोई सुखथाना, सहजे होए सोई पहलमाना, बिनसे बैर नाही को बैरी, सब एको है पहलना, डर चूके बिनसे अंधियारे, प्रगट पए प्रभ पुरख निरारे, आप छोड़ पए सरनाई, जिसका साथ तिस कहलना, ऐसा को वडभागी आया, आठ पहर जन खसम ते आया, ते जन कै संग तरै सब कोई, सो परवार सदारना, ए बख्शीस खसम ते पावा, आठ पहर कर जोड़ ते आवा, नाम जपी नाम सही समावा, नाम नानक मिले उचारना, मारू महला पंजवा, सूरत देखना पूल गवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा, जग में कोई रहन ना पाए, निचल एक नारायणा, गुरपुरे की पौ सरनाई, मोह सोग सब पर मिटाई, एको मंत्र दृढ़ाए औखद, सच नाम रिद गायना, जिस नामै कौ तरसै बहु देवा, सगल भगत जा की कर दे सेवा, अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुरपुरे ते पायना, होर द्वारा कोई ना सूजै, त्रिपमन तावै ता किशु न बूजै, सतगुर साहो भंडार नाम जिस, एहो रतन तिसै ते पायना, जा की तूर करे पोनीता, सुर नर देव न पावै मीता, सत पुरख सतगुर परमेसर, जिस भेट पार परायणा, पार जात लोड़ै मन प्यारे, काम तेन सोही दरबारे, तृप्त संतोख सेवा गुरपुरे, नाम कमाए रसायणा, गुर कै शब्द मरै पंच धातु, पै पार ब्रह्म होवै निर्मला तू, पारस जा पेटै गुरपुरा, ता पारस परस दिखायणा, कई बैकुंठ नाही लवै लागे, मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे, एक अंकार सतगुर ते पाईऐ, हम बल बल गुर दरसायणा, गुर की सेवना जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए लए सो सेवक, जिस वट पाग मथायणा, गुर की महिमा भेद ना जाने, तुष मात सुन सुन बखाने, पार ब्रह्म परंपर सतगुर, जिस सिमरत मन सीत लायना, जा की सोए सुनी मन जीवै, हृदय वसै ता ठंडा थीवै, गुरमुखो अलाए ता सोभा पाए, तिस जमकै पंथ ना पायना, संतन की शरण आई पड़िया, जियो प्राण तनिया गै धरिया, सेवा सुरत ना जाना काई, तुम करो दया किरमायणा, निर्गुण कौ संग लिहो रलाए, कर कृपा मोहि टै लै लाए, पखा फेरो पीसो संत आगै, चरण तोए सुख पायणा, बहुत द्वारे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरणाया, सदा सदा संतै संग रखो, एहो नाम दान देवायणा, पय कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे, सुख सहजो सदा आनंदा, नारक दा दसायणा, मारू सोल हे महला पंजवा, एको अंकार सतगुर प्रसाद, सिमरै धरती अर आकाशा, सिमरै चंद सूरज गुणतासा, पौन पानी बै संतर सिमरै, सिमरै सगले उपार जना, सिमरै खंड दीप सब लोवा, सिमरै सिमरै पाताल पुरिया सच सोवा, सिमरै खाणी सिमरै बाणी, सिमरै सगले हर जना, सिमरै ब्रह्मे बिस्न मेह।

जन्म जन्म की मैल मिटावो, दीर्घ रोग मिटाय हर औखद, हर निर्मल रापै मंगना। श्रवणी सुनाओ बिमल जा स्वामी, एकाओट तजो बिख कामी, निम्न पाए लगो दास तेरे, कर सुकृत नाही संगना। रसना गुण गावे हर तेरे, मिटै कमाते अवगुण मेरे, सिमर सिमर स्वामी मन जीवै, पंच दूत तज तंगना। चरण कमल जप बोहित चरिया, संत संग मिल सागर तरिया, अर्चा बंदन हर संत निवासी, बाहुड़ जो नंगना। दास दासन को कर लिहो गोपाला, कृपा निधान दीन दयाला, सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न होवी भंगना। मन तन अर्प धरी हर आगै, जन्म जन्म का सोया जागै, जिसका सा सोई प्रतपालक, हाथ त्यागी हूं मैं हंतना। जल थल पूर्ण अंतर जामी, काटकट रव्या छल स्वामी, परम पीत खोई गुरपूरै, एक रव्या सरबंगना। जात कत पेखाओ प्रभ सुख सागर, हर तोट भंडार नाही रतनागर, अगै अगा किशमित नहीं पाई है, सो बूझै जिस कर पंगना। छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिटवी डंजा, कर गै काढ़ लिए प्रभ अपने, अम्यो तार दृष्टंगना। एको एक रव्या सब ठाई, तिसबिन दूजा कोई नाही, आद मद अंत प्रभ रव्या, तृष्ण बुझी परमंगना। गुर परमेसर गुर गोबिंद, गुर करता गुर सद बख्शंद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना। जो पेखा सो सब के स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी, जो कीनो सो तुम्हें करायो, शरण सहाई संत है तना। जाचक जाचे तुम्हें अरा दे, पतत पावन पूर्ण प्रभ सा दे, एको दान सर्व सो गुण निद, आन मंगन ने किंचना। काया पात्र प्रभ करण हारा, लगी लाग संत संगारा, निर्मल सोए बनी हर बाणी, मन नाम जीठे रंगना। सोले कला संपूर्ण फलिया, अंत कला हुए ठाकर चढ़िया, आनंद बिनोद हर नाम सुख नानक, अमृत रस हर पुंचना। मारू सोल हे महला पंजवा, एको अंकार सतगुर प्रसाद, तू साहिब हां सेव कीता, जियो पिण सब तेरा दीता, करन करावन सब तू है नाही केचिया साड़ा। तुम्हें पठाए ता जग मैं आए, जो तुद पाणा से कर्म कमाए, तुझ ते बाहर किशु ना होवा, ता पी नाही किश काड़ा। उहां हुक्म तुम्हारा सुनिए, इहां हर जस तेरा पढ़िए, आपे लेखा लेखा आपे, तुम स्यो नाही किश चाड़ा। तू पिता सब बारक थारे, ज्यो खिलावे त्यों खेलन हारे, उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चले नाही को वे पाड़ा। एक बैसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देह दसंतर, एक ही कौ कास एक ही कौ राजा, इन मैं कही है क्या कूड़ा। कमन सो मुक्ति कमन सो नरका, कमन सह सारी कमन सो भगता, कमन सो दाना कमन सो होछा, कमन सो सुरता कमन जड़ा। हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म संसारी हुक्मे भगता, हुक्मे होछा हुक्मे दाना, दूजा नाही अवर तड़ा। सागर की ना आत्म पारा, एक खड़े रसा तलकार, मनमुख गावारा, एक ना

सुरत समाए, जीबर साए नी चुनड़ी रती लाल लवाए। अंदर मुस्क चुकोलिया कीमत कहीं ना जाए पौड़ी। इस युग में नाम निदान है नामो नाल चले, एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चियो पल्ले। हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल्ले, से सह सचेवन जा रहा जिन हर तन पल्ले। हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल्ले, सलोक महला तीजा। मन मुखवा पार सार ना जाननी, बिख विहाजै बिख संगरै बिख्यों तरह प्यार। बारों पंडित सदाए दे मनो मूर्ख का वार, हरसों चेतना लायनी वादी तरन प्यार। वादा किया करन कहानिया कूड़ बोल करै आहार। जग में राम नाम हर निर्मला होर मैला सव्याकार। नानक नाम ना चेतनी हुए मैले मरै गवार, महला तीजा। दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मने दुख जाए, आपे दाता सुखे दाय आपे देश जाए। नानक ए वै जानी है सब कित सैर जाए पौड़ी। हर नाम बिना जगत है निरतन, बिन नामे तृप्त नाही। दूजे परम पुलाया हौ मैं दुख पाही, बिन कर्मा किशु ना पाई है। जे बहुत लो चाही आवे जाए जम्मे मरे, गुर शब्द छुटाही आप करे किसे आखिए दूजा को नाही। सलोक महला तीजा। इस जग में संती तन खटिया, जिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आए। सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाए। ए तन पाया भुख लथी सुख वसिया मन आए। जिन्ना कहो तुर लिखिया तिन्नी पाया आए। मन मुख जगत निरतन है माया नू बिल लाए। अंदन फिरदा सदा रह भुख न कदे जाए। सांत ना कदे आवई न सुख वसे मन आए। सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे ना जाए। नानक विण सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए। सदा सदा सुख में रह सच्चे महे समाए। महला तीजा। जिन उपाई मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो पाए रहो जिस बिन अवर ना कोए। खाना शब्द चंगियाईया जित खाद है सदा तृप्त होए। पहनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला, मैला कदे ना होए। सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे ना होए। देही नो शब्द सिंगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखाले सोए पौड़ी। अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै, हर हर नाम ते आई है हमें अज्ञान गवापै। अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै, जिन चाखिया से निरपौ पए से हर अस्त्रापै। हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा। लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजै कोए। गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुरप्रसादी गुण पाईयान जिसनो नजर करे, महला तीजा। गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार। नानक हुक्म मन्ने सुख पाई है गुर शब्दी विचार पौड़ी। अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ, गुर शब्दी दर जानी है अंदर महल असराओ। खरे परख खजाने पाईयान खोटिया नाही थाओ। सब सचो सच वर्तदा सदा सच ने आओ। अमृत का रस आया मन वसिया नाओ। सलोक महला पहला। हौ मैं करी ता तू नाही, तू होवे हो नाहे। बुझो ज्ञानी बुझना एह अकथ कथा मन माहे। बिन गुर तत ना पाई है अलख वसै सब माहे। सतगुर मिले ता जानी है
जा शब्द वसै मन माहे, आप गया भ्रम पहो गया, जन्म मरण दुख जाहे, गुरमत अलख लखाइय उतो मत तराहे, नानक सो हंग हंसा जप जापो, त्रिभवन तसै समाहे। महला तीजा, मन मानक जिन परखिया, गुरशब्दी विचार उसे जन विर ले जानी है, कलयुग विच संसार आपै नू आप मिल रहा, हमें दुबधा मार, नानक नाम रते दुत्तर तरे, पौजल विखम संसार पौड़ी, मनमुख अंदर ना भलनी मुठे अमते, चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते, सिमरत शास्त्र ना सोधनी, मनमुख विगुते बिन गुर किने ना पायो, हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया, हर जप हर गते।

पौड़ी पाणै हुक्म नायोन पाणै सुख पाया पाणै सतगुर मेलियोन पाणै सच ते आया पाणै जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया। श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद। महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुखसार सो ब्राह्मण पलाया खीए जे बुझे ब्रह्म विचार हर साल आहे हर पड़े गुर कै शब्द विचार आया ओ प्रवान है जे कुल का करे उधार अगै जात न पुछिए करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना बिखिया नाल प्यार अंदर सुख ना हो गई मनमुख जन्म खुवार नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार। पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नर कच्चा जित भावै तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर सबदी रचा गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जच्चा ज्यो नानक आप नचाएंदा तिवही को नचा सुद। मारू वार महला पंजवा डखणे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू चाहो सज्जन।

आवै जाए भवाइय बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरों थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खच्चा वैर करे निर्वैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चे पात साहे वेख तुर करमचा जम दूती है हेरिया दुख ही मैं पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा डखणे महला पंजवा पर बाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए जन्म मरण मल उत्तर है सच्चे के गुण गाए महला पंजवा देह अंधारी अंध सुनी नामे हुनिया नानक सफल जनम जय कट वुठा सच धनी महला पंजवा लोयन लोई डेठ प्यास न बुझै मुंह कणी नानक से अखड़िया बयान जिनी डसन दो मां पेरी पौड़ी जिन जन गुरमुख सेविया तिन सब सुख पाई ओ आप तरिया कोटंब स्यो सब जगत तराई ओन हर नामा तन संचया सब तिखा बुझाई ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई ओन वैरी मित्र सब कीते आ सब नाल सुभाई होवा ओही अल जग मैं गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर स्यों बन आई। डखणे महला पंजवा सच सुहावा कंडिया कूड़े कूड़ी सोए नानक विरले जानिया जिन सच पल्ले होए महला पंजवा सज्जन मुखिया नूप अठे पहर निहाल सा सुतड़ी सो सहु डेठो तैं सुपने हो खनिया महला पंजवा सज्जन सच परख मोख्या लावण थोथरा मन मजाहू लख तुदो दूर ना सो पिरी पौड़ी धरते आकाश पाताल है चंद सूर बिनासी बाद साहा साहा उमराव खान टाहे डेरे जासी रंग तुंग गरीब मस्त सब लोग सदासी काजी सेख मसाए का सबे उठ जासी पीर पै कंबर औलिए कोथिर न रहासी रोजा बाग निवाज कतेब विण बुझे सब जासी लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी निश्चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अबनासी डखणे महला पंजवा डिठी हब टंडोल हिक सबाज ना कोए आओ सज्जन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवा आस क्या सा बाहरा मुंह मन वड्डी आस आस निराशा हिक तू हां बल बल बल गई आस महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख विण डिठे मरयोद बाज प्यारे अपने बिरही नाती रोद पौड़ी तट तीर्थ देव देवालिया केदार मथुरा काशी कोट तेतीसा देवते सन इंद्रै जासी सिमरत शास्त्र वेद चार खड़ दर्शमासी पोथी पंडित गीत कवत कवते पीजासी जति सती सन्यासिया सब काल वासी मन जोगी दे गंबरा जमै सन जासी जो दिसै सो विनसना सब बिनस बिनासी थिर पार ब्रह्म परमेश्वर सेवक थिर होसी सलोक डखणे महला पंजवा सह नंगे नह नंग भुखे लख न भुखिया डुखे कोण न डुख नानक प्री पखंदो शुभ दिष्ट महला पंजवा सुख समूहा पोग पूम सबाई कोतनी नानक हबो रोग मृतक नामे हुणिया महला पंजवा हिक सकू तू आहे पछाणु पी हिक कर नानक आसड़ी निवाहे मानख पर थाई लजीम दो पौड़ी निश्चल एक नारायण हर अगमा गादा निश्चल नाम निदान है जिस मृत हर लादा निश्चल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गा वादा सच धर्म तप निश्चलो दिन रहन आराधा दया धर्म तप निश्चलो जिस कर्म लिखा दा निश्चल मस्तक लेख लिखिया सो टलै ना टला दा निश्चल संगत साध जन
ਬਚਨ ਨਿਚਲ ਗੁਰਸਾਦਾ ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧਾ। ਸਲੋਕ ਡੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਡਬੰਦੋ ਆਪ ਸੋ ਤਰਾਏ ਕਿਨ ਖੇ ਤਾਰਿੰਦ ਲੋਪੀ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਸਿਉ ਰਤਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਕਥਨ ਨਾਉ ਸੁਣਨ ਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ ਮੂੰਹ ਜਲਾਉ ਤਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀ ਪਸੰਦੋ ਹਰਿਓ ਥੀ ਉਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

बोलत ही बड़लाज, राम जे पाया राम ते भवे न बार बार रहाओ, झूठा जग डहके कना दिन दुए बर्तन की आस, राम उदक जेह जन पिया ते बौर न पई प्यास, गुर प्रसाद जे बूझे आयासा ते भया निरास, सब सच नदरी आया जो आतम भया उदास, राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार, कहो कबीर कंचन पया प्रम गया समुंदर पार, उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावेंगे, सुनने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसा का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ, जब चुके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ते आवेंगे, जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जाओ अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे, जीवत मरो मरो फिर जीवो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहा लिव सोई, जाओ तुम को दूर करत हो तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक होए रहो सगल मैं अब कैसे परमावो, राम मोको तार कहां ले जई है, सो दो मुक्त कहां देव कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ, तारन तरन तवे लग कही है जब लग तत न जानिया, अब तो बिमल भय कट ही मैं कह कबीर मन मानिया, जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन, काहे की जित है मन पावन, जब जब आए केस ते पकड़े ते हर को नाम छावन रहाओ, काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन, कहे कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो तर महतो बसे पंच किरसाना, नैनू नगटू श्रम नू रसपत इंद्री कया नमाना, बाबा अब ना बसो ए गाओ, करी करी का लेखा मांगे कायथ चेतू नाओ रहाओ, धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, पंच किरसान वा पाग गए लै बांधे ओ जियो दरबारी, कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहोर ना पाओ जल फेरा, राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अनपव किने ना देखिया बैरागी अड़े, बिन पै अनपव होए वना हम बै, सहो हदूर देखे ता पव पवे बैरागी अड़े, हुक्मै बूझे ता निरपव होए वना हम बै, हर पाखंड ना की जाई बैरागी अड़े, पाखंड रता सब लोक बना हम बै, तृष्णा पासना छोड़ई बैरागी अड़े, ममता जालिया पिंड बना हम बै, चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े, जे मन मृतक होए बना हम बै, सतगुर बिन बैराग ना हो वही बैरागी अड़े, जे लोचे सब कोए बना हम बै, कर्म होवे सतगुर मिले बैरागी अड़े, सहजे पावे सोए वना हम्बे, कहो कबीरक बेनती बैरागी अड़े, मोको पौजल पार उतार वना हम्बे, राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओ गरीब मोहे पावे रहाओ, हस्ती देख परम ते पूला श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया, खीर समानो साग मैं पाया गुण गावत रैन बिहानी, कबीर को ठाकर अंध बिनोदी जातना काहू की मानी, सलोक कबीर गगन दमामा बाजियो परयो निशा न काओ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छड़ै खेत, कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद,
ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚਾਰੈ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਲੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਹੁੰ ਜੁਗ ਜਾਣਿਓ ਜਸ ਕੀਰਤ ਮਾਥੈ ਸ਼ਤਰ ਤਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਬਤ ਕੋ ਨਾ ਤਰਿਓ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਰਹਾਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਬਰਾਇਤ ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਮ ਡਰਿਓ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ਗਰਜਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ ਅੰਬਰੀਕੋ ਦਿਓ ਅਭੈ ਪਦ ਰਾਜ ਭੀਖਣ ਅਧਿਕ ਕਰਿਓ ਨਾਉ ਨਿਧ ਠਾਕਰ ਦੇਈ ਸੁਦਾਮੈ ਤ੍ਰੂ ਅਟਲ ਅਜਹੂ ਨਾ ਟਰਿਓ ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਏ ਦੇਹ ਧਰਿਓ ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਭਗਤ ਬਸ ਕੇਸਵ ਅਜਹੂ ਬਲਕੇ ਦੁਆਰ ਖਰੋ ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸੂਆ ਜੋ ਸੋਇਓ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ ਰਚਿਓ ਤੰਦੈ ਝੂਠ ਸਵਾਨ ਸੂਕਰ ਬਾਇਸ ਜਿਵੈ ਭਟਕਤ ਚਾਲਿਓ ਊਠ ਆਪ ਸਕਾਓ।

करते जन्म सिरानो कबू ना सिमर्यो राम। कह कबीर चेतै नहीं मूर्ख मुक्त गवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उत्तर सपार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़सा दत किया। अबल बल तोड़िया अचल चल थपिया, अखड़ घड़िया तहां अप्यो पिया। मन आद गुण आद वखाणिया, तेरी दुबदा दृढ़ समानिया। रहाओ अर्ध कौ अर्धया, सरद कौ सरदया, सलल कौ सलल समान आया। बदत जय देव जय देव कौ रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम सिमर पछताहेगा मन, पापी जियारा लोभ करत है आज काल उठ जाहेगा। रहाओ लालच लागे जन्म गवाया, माया परम पुलाहेगा। तन जोबन का गर्भ ना की जय, कागद ज्यो गल जाहेगा। जो जम आए केस गह पटकै, ता दिन किश ना बसाहेगा। सिमरन भजन।

नहीं, अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी, देखत मोदर रहस मन उपजियो, नानक प्रे अमृत बानी। केदारा महला पंजवा, घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद, दीन बिनाओ सुन दयाल, पंचदास तीन दोखी, एक मन अनाथ नाथ, राखो कृपाल रहाओ, अनक जतन गमन करो, खट कर्म जुगत ध्यान धरो, उपाव सगल कर हारो, नय नय हुटै बिकराल, शरण बंदन करना पते, भव हरण हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे परम मोह सागर, लग संतना पग पाल। केदारा महला पंजवा, घर चौथा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, सरनी आयो नाथ निदान, नाम प्रीत लागी मन पीतर, मांगन कौ हरदान रहाओ, सुखदाई पूर्ण परमेश्वर, कर कृपा रखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी, हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोबिंद दमोदर, निर्मल कथा ज्ञान, नानक कहो हर कै रंग रंग, चरण कमल संग ध्यान, केदारा महला पंजवा, हर के दर्शन को मन चाओ, कर कृपा सत्संग मिलावो, तुम देवो अपनो नाओ रहाओ, करो सेवा सतपुरख प्यारे, जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई, कमन अनूप तेरो ठाओ, सर्व प्रतपालय सगल समालय, सगलियां तेरी छाओ, नानक के प्रपुरख विदाते, घट घट तुझे दिखाओ। केदारा महला पंजवा, प्रे की प्रीत प्यारी, मगर मन मैं चितवो वासा, नैनो तार तुहारी रहाओ, ओए दिन पहर मूर्त पल कैसे, ओए पल करी किहारी, खूले कपटो तबट बुझ तृष्णा, जीवो पेख दरसारी, कौन सो जतन ओ पाओ कनेहा, सेवा कौन बिचारी, मान अवमान मोह तज नानक, संतै संग उदारी। केदारा महला पंजवा, हर हर हर गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोबिंदे, अपना नाम जपावो रहाओ, काड लिए प्रभयान बिखैते, सासंग मन लावो, भ्रम पौ मोह कट्यो गुरबचनी, अपना दर्श दिखावो, सब की रेन होए मन मेरा, अहं बुद्ध तजावो, अपनी भगत देह दया लावड़, भागी नानक हर पावो। केदारा महला पंजवा, हर बिन जन्म अकार्थ जात, तज गोपाल आन रंग राचत, मिथ्या पहरत खात रहाओ, तन जोबन संपै सुख भुगवै, संग ना निभत मात, मृग तृष्णा देख रचियो बावर, द्रुम छाया रंग रात, मान मोह महामद मोहत, काम क्रोध कै खात, कर गै लेहो दास नानक कहो, प्रभ जी होए सहात। केदारा महला पंजवा, हर बिन कोई न चाल साथ, दीना नाथ करना पत स्वामी, अनाथा के नाथ रहाओ, सुत संपत बिखिया रस भुगवत, नह निबहत जम कै पाथ, नाम निदान गाओ गुण गोबिंद, उदर सागर के खात, सरण समर्थ या काथया गोचर, हर सिमरत दुखलाथ, नानक दीन तूर जन बांशत, मिले लिखत तुरमाथ। केदारा महला पंजवा, घर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बिसरत नाहे मन ते हरी, अब यह प्रीत महाप्रबल पई, आन बिखै जरी रहाओ, बूंद कहां त्याग चात्रक मीन, रहत ना करी, गुण गोपाल उचार रसना, टेव एह परी, महानाद कुरंक मोहयो, बेद तीखन सरी, प्रभ चरण कमल रसाल नानक, गाठ बांध तरी। केदारा महला पंजवा, प्रीतम बस्तो रिदमै।

परम पीत तो निवार ठाकरो गह लेहो अपनी ओर रहाओ। अदक गर्त संसार सागरो कर दया चारो तोर। संत संग हर चरण बोयथ उदर ते लै मोर। गर्भ कुंट मैं जिने तारियो नहीं बिखे मन मैं होर। हर सकत सरन समर्थ नानक आन नहीं निहोर। केदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान। गुण गोपाल चार दिन रैन पय कलमलहान रहाओ। त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान। मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान। सत पुरख्या काल मूर्त हृदय तारो ध्यान। नाम निधान लाभ नानक बसते हे परवान। केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार। काल कलेस ना कछ व्यापै संत संग व्यवहार रहाओ। कर अनुग्रह आप राखियो न उपजतो बेकार। जिस प्राप्त होए सिमरै तिस दहत न संसार। सुख मंगल कल आनंद हर जस सुख मंगल आनंद हर हर। प्रभ चरण अमृत सार। नानक दास शरणागति तेरे संतना की शार। केदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत। जीवन रूप विसार जीवै तेह कत जीवन होत रहाओ। खात पीत अनेक बिंजनु जैसे पार बहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत। तज गोपाल जे आन लागे से बहु प्रकारी रोत। कर जोर नानक दान मांगै हर रखो कंठ परोत। केदारा महला पंजवा संतै तूर ले मुख मली। गुणा अचत सदा पूर्ण न दुख व्यापै कली रहाओ। गुरबचन कार्य सर्वपूर्ण ईत उत न हली। प्रभ एक अनक सर्वत पूर्ण दिखै अगन्ना जली। गह पुजा लीनो दास अपनो ज्योत ज्योति रली। प्रभ चरण सरन अनाथ आयो नानक हर संग चली। केदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचै। कोट सांत आनंद पूर्ण जलत शांति बुझै रहाओ। संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरै मुचै। रेन जनकी लगी मस्तक अनक तीर्थ सुचै। चरण कमल ध्यान पीतर कड़कटै स्वामी सुजै। शरण देव्या पार नानक बहुर जम नहीं लुजै। केदारा शंत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिल मेरे प्रीतम प्यारिया रहाओ। पूर रहा सर्वत्र मैं सो पुरख विधाता। मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता। संतन संग जाता पुरख विधाता काट काट डदर निहालिया। जो सरनी आवै सर्व सुख पावै तिल नहीं पन्ने कहलिया। हर गुंडित गाए सह सुभाए प्रेम महारस माता। नानक दास तेरी शरणाई तू पूर्ण पुरख विदाता। हर प्रेम भगत जन बेदया से आन कत जाही। मीन बिशोहा ना सहै जल बिन मर पाही। हर बिन क्यों रही है दूख किन सही है। चात्रक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावै चकवी सुख पावै सूरज करण प्रगासिया। हर दर्श मन लागा दिन सुभागा अंदन हर गुण गाही। नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टिकाही। सास बिना ज्योदे हुरी कत सोभा पावै। दर्श बिहुना साध जानो खिण टिकन न आवै। हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया। हरसक बैरागी नाम लिवलागी कतो ना जाए नखेदया। हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक नाम आवै। हो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण संग समावै। खोजत खोजत प्रभ मिले हर करना तारे। निर्गुण नीचा नाथ मैं नहीं दुख विचारे।
नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वछल सुन अंचलो गहया घट घट पुर समानिया सुख सागरो पाया सह सुभाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने राम नाम उरहारे राग के दारा बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद उस्तत निंदा दो बिबरजत तजो मान अब माना लोहा कंचन सम कर जाना ते मूर्त भगवाना तेरा जानू एक याद कोई काम क्रोध लोमो बिबरजत हर पद चीने सोई रहाओ राजगुण तम गुण सतगुण कहिया एह तेरी समाया चौथे पद कहो जो नर चीने तिन ही परम पद पाया तीर्थ बरत नेम सो संजम सदा रह निकामा तृष्णा अरमाया परम चूका चितवत आत्म रामा जेह मंदर दीपक परगासिया अंधकार तह नासा निरपव पूर रहे परम पागा कह कबीर जनदासा किन्ही बनजिया का सीतांबा किन्ही लौंग सुपारी संतो बनजिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी रहाओ साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए पंडारी आपै रतन जवाहर मानक आपै है पासारी आपै दह दस्य आप चलावे निचल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण पर डारी कहत कबीर सुनो रे संत हो निभि खेप हमारी री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फेरावो मन मत वार मेर सर पाठी अमृत तार चुआवो बोलो पहिया राम की दुहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बुझै हर रस पावे पाई जेते कट अमृत सब ही मैं पावत सह पियाई नगरी एक नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटे दसवां दर खूले तमन खीवा पाई अपै पद पूर ताप तह नासे कह कबीर बिचारी उबट चलनते एह मद पाया जैसे खोंद खुमारी काम

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदा नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब को लो धारण हार। बिन नावे मनमुख

प्रसाद परम पद पाया सब इच पूजा मनहार रहाओ सब मैं एको रव रहया गुरबिन बूझ ना पाए गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अंदन हर गुण गाए सुखदाता हर एक है होर थे सुख ना पाहे सतगुरु जिनी ना सेवया दाता से अंत गए पछताहे सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति जो समाए पैरव महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना भूला झोटा खाई मर मर जमै सदा दुख पाए दर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हिरदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे पवजल तरना रहाओ पेख करै बहुत चित डोलै अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूखयत बहुती भौकत फिरै दरबार गुर कै शब्द मरै फिर जीवै तिनको मुख द्वार अंतर सांत सदा सुख होवै हर राख्या और तार ज्यो तिस पावै तिवै चलावै करना किशु ना जाई नानक गुरमुख शब्द समाले राम नाम वड़ियाई पहरो महला तीजा हम मैं माया मोहे खवाया दुख हटे दुख आए अंतर लोभ हलक दुख पारी बिन विवेक परमाए मन मुख त्रिग जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदन लागे प्यार रहाओ पशुआ कर्म करे नहीं बूझे कूड़ कमाने कूड़ होए सतगुर मिले ता उल्टी होवे खोज लह जन कोए हर हर नाम हृदय सदवसिया पाया गुणी निदान गुर प्रसादी पूरा पाया चूका मन अभिमान आपे करता करे कराए आपे मार्ग पाए आपे गुरमुख दे वड़ियाई नानक नाम समाए पहरो महला तीजा मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला दूजे पाए फाथे जमजाला सतगुर करे मेरी प्रतपाला हर सुखदाता मेरे नाला गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरै सासना ते बालको गम ना करै रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लियो उबारे प्रहलाद कह सुनो मेरी माए राम नाम ना छोड़ा गुरदिया बुझाए संडा मरका सब जाए पुकारे प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रगराया हाथ हाथ खड़ग करताया अत अहंकार हर तेरा कहां तुझ ले उबार खिन मैं भयान रूप निकसिया थम्यो पाड़ हर नाक्ष नखी बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे गुर कै शब्द हम बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे पहरो महला तीजा आपे दैत लाए दिते संत जना को आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख ना होई जुग जुग भगता की रखदा आया दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किशु ना जाने सब दे मेल मिलाया रहाओ आंदन भगत करै दिन राती दुबदा सब देखोई सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई मूर्ख दुबदा पड़ है मूल ना पछाण है बिरथा जन्म गवाया संत जना की निंदा करै दुष्ट दै चढ़ाया प्रहलाद दुबदा ना पड़े हर नाम ना छोड़ै डरै ना किसै दा डराया संत जना का हर जियो राखा दैतै काल नेड़ आया अपनी पैज आपे राखै भगतां दे वड़ियाई नानक हर नाक सनखी बिदारिया अंधे दर की खबर ना पाई
राग पहराओ महला चौथा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जन संत कर कृपा पग लायण गुर शब्दी हर पज सुरत समायण मेरे मनो हर भज नाम नारायण हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख भव जल हर नाम तरायण रहाओ संगत साध मेल हर गायण गुरमती ले राम रसायण गुर साधु अमृत ज्ञान सर नायण सब किले विख पाप गए गावायण तू आपे करता सृष्ट तरायण जन नानक मेल तेरा दाद दसायण भैरव महला चौथा बोल हर नाम सफल सा करी गुर उपदेश सब दुख पर हरी मेरे मन हर भज नाम नरहरी कर कृपा मेलो गुरपुरा सत संगत संग सिंध पौतरी रहाओ जग जीवन त्याए मन हर सिमरी कोट कुटंतर तेरे पाप पर हरी सत संगत साध तूर मुख परी इशनान कियो अठसठ सुरसरी हम मूर्ख कव हर कृपा करी जन नानक तारियो तारण हरी पैरो महला चौथा सुकिरत करनी सार जप माली हृदय फेर चले तुद नाली हर हर नाम जपो बनवाली कर कृपा मिलो सतसंगत टूट गई माया जमजाली रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली तिस कड़ी है शब्द सच्ची टकसाली हर अगमा गोचर गुर अगम दिखाली विचकाया नगर लद्दा हर पाली हम बारक हर पिता प्रतपाली जन नानक तारो नदर निहाली पहरो महला चौथा सब कर तेरे तू सब ना माहे तुते बाहर कोई ना है हर सुखदाता मेरे मन जाप हाँ तुद सालाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाओ जै जै देखा तै हर प्रभ सोए सब तेरे वस दूजा अवर ना कोए जिस कहो तुम हर राखिया पावे तिसके नेड़े कोए न जावे तू जल थल महियल सब तै भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर पहरो महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का संत हर की हर मूर्त जिस हृदय हर नाम मुरार मस्तक भाग होवे जिस लिखिया सो गुरमत हृदय हर नाम समार मधसूदन जपिया और तार देही नगर तस्कर पंच धातु गुरसब्दी हर का डे मार रहाओ जिनका हर सेती मन मान्या तिन कार्ज हर आप सवार तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर अंगीकार किया करतार मता मसूर तो ता किश कीजै जे किश होवै हर बाहर जो किश करै सोई पल होसी हर त्यावो अंदन नाम मुरार हर जो किश करे सो आपे आपे ओ पूछना किसै करे बीचार नानक सो प्रभसदा त्याई है जिन मेलिया सतगुर कृपा तार पैरो महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी जिन जप्यागत होए हमारी तिनका दर्श देख मन बिकसै खिन खिन तिनको हों बलिहारी हर हृदय जप नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी हम दासन दास की जय पनिहारी रहाओ तिन मत यूतम तिन पत यूतम जिन हृदय वस्या बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साध ना पाया ते हर दर गए कर डे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावे तिन ना काटे सृजनहारी हरे आप बोलावे आपे बोले हरे आप निरंजन निरंकार निराहारी हर जिस तू मिले सो तुद मिलसी जन नानक आए जंत विचारी पैरो महला चौथा सतसंगत साई हर तेरी जत हर जित हर कीर्त हर सुने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम श्रेवै नित चरणे
जग जीवन हर त्याय तरने अनेक संख नाम हर तेरे ना जाही जेवा इत गणने रहाओ। गुर सिख हर बोलो हर गावो ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सो कहने। तन सो वंश तन सो पिता तन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दर गए हर जन बने। हर हर अगमो नाम हर तेरे विच भगता हर तरने नानक जन पाया मत।

नाम बिना सब दुनिया शार। अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह। नी तरिया तरपने खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए। नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण। पहराओ महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सतकर सहो। जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवाओ। हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग में एक नाम उदार। नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा। सदगुर सेव सर फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए। पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ। रहाओ साधु संग होवे उदार, शोभा पावे प्रभ कै द्वार। सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा। नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान। पहरो महला पंजवा, अपने दास को कंठ लगावे, निंद को अगन में पावे। पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही। पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत। निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया। दुखी अपना कीता पाया, आए ना जाई रहया समाई। नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा। चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता। ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता। अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे। जो चितविय तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़। दासी को सिमरै मनमुख अंध ज्ञाना। हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा। अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा। होम जग जप तप सब संयम, तड़ तीर्थ नहीं पाया। मिटाया पे सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया। पहरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए। दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए। संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर मैं पूर्ण। रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो। जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सरमन मैं पेख्यो। नट नाटक निरताए,

कर्तार, जैसी ऊपर नजर करे करतार, ते जन के सब का इसवार, तिसका रखा एको सोए, जन नानक पढ़ना साके कोए, पैरो महला पंजवा।

रोगे मरता रोगे जरमै, रोगे फिर जोनी भरमै, रोग बंद रहन रति ना पावै, बिन सतगुर रोग कतै ना जावै। पार ब्रह्म जसकीनी दया, बहां पकड़ो रोगों कढ लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। पैरो महला पंजवां, चीत आवै ता महा आनंद, चीत आवै ता सब दुख पंज, चीत आवै ता सरदा पूरी, चीत आवै ता कबै ना चूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरै दियो रंग लाए रहाओ। चीत आवै ता सर्ब को राजा, चीत आवै ता पूरे काजा, चीत आवै ता रंग गुलाल, चीत आवै ता सदा निहाल। चीत आवै ता सद धनवंता, चीत आवै ता सद निपरंता, चीत आवै ता सब रंग माणे, चीत आवै ता चुकी काणे। चीत आवै ता सहज कर पाया, चीत आवै ता सुन समाया, चीत आवै सद कीर्तन करता, मन मानिया नानक भगवंता। पैरो महला पंजवां, बाप हमारा सद चिरंगजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा बनासी, कुटुंब हमारा नी करवासी। हम सुख पाया ता सवै सुहेले, गुरपुरै पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते उच्चे, देश मेरे बेअंता पूछे, राज हमारा सदी निचल, माल हमारा खूटा बेचल। शोभा मेरी सब जुग अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीर्त हमरी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे मांझ, पिता पुत्रल किन्नी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूते कै रंग लीने। पैरो महला पंजवां, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हम अपराधी तुम बख्साते। जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवै ता निर्मल होई। सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ। पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना केराया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पय दयाला, नानक दास देख पय निहाला। पैरो महला पंजवां, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बिदाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वड़ियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीबाण, सतगुर कहो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पैरो महला पंजवां, नाम लैत मन प्रगट पया, नाम लैत पाप तंते गया, नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठ सठ मजनाया। तीर्थ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अतमूड सुगियाना, नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ ना आवै, नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास, नाम हमारी साची रास।

नाम हमारा भोजन पाओ, नाम हमारा मन का सुहाओ, नाम ना विसरै संत प्रसाद, नाम लै तो अनहद पूरे नाद। प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई, गुर कृपा ते नाम से

तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाकर हूं दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। कर कृपा करो प्रभदात, तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ। हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दा तारा। तव प्रसाद रंग रस माणे, घट घट अंतर तुम्हें समाणे। तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, सा संग तुमरे गुण गाओ। तुमरी दया ते हुए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास। हम बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव। दया करो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे। पैरो महला पंजवा, सब ते ऊच जाका दरबार, सदा सदा ताका जोहार। ऊचे ते ऊचा जाका थान, कोट अग्गा मिटे हर नाम। ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ। जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब कट माहे। प्रगट भया साधु कै संग, भगता राधे अंदन रंग। दें दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापन हार। जाका हुक्म ना मिटे कोए, सिर पातशाह साचा सोए। जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिसी पासा। राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा। पैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया। बलन बर्तन कौ संबंध चेते आया। बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग ना होए। बिखिया का सब तंद पसार, विरले की नौना म्याधार रहाओ। त्रिबद माया रही ब्याप, जो लपटानो ते दू संताप। सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निदान वड पागी पाए। स्वांगी स्यों जो मन री जावै, स्वांग उतारे है फिर पछतावै। मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार। एक वस्त जे पावै कोए, पूर्ण काज ताही का होए। गुर प्रसाद जिन पाया नाम, नानक आया सो प्रवान। पैरो महला पंजवा, संत की निंदा जोनी भवना। संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दुख सहाम। डान दैत निंद कौ जाम, संत संग करे जो बाद। तिन निंदे नाही के साध रहाओ, भगत की निंदा।

निंदक की गत कत हु नाहे, आ बीजा पे ही खाहे। चोर जार जुआर दे बुरा, अनहोंदा पार निंदक सिर तरा। पार ब्रह्म के भगत निर्वैर, सो निस्तरै जो पूजै पैर। आद पुरख निंदक पोलाया, नानक कीर्तना जाय मिटाया। पैरव महला पंजवा, नाम हमारे बेदर नाद। नाम हमारे पूरे काज, नाम हमारे पूजा देव। नाम हमारे गुरु की सेव, गुरपुर दृढ़ हर नाम। सब ते उत्तम हर हर काम रहाओ। नाम हमारे मजन इशनान, नाम हमारे पूर्ण दान। नाम लैते सगल पवीत, नाम जबत मेरे पाई मीत। नाम हमारे सौन संजोग, नाम हमारे तृप्त सो भोग। नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार। जाके मन वस्या प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक। मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवै नाओ। पैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना। अनक पाप जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम। भगत अपने कहो देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय। करण करावन हर स्वामी, ताते बिरथा कोई ना जाए रहाओ। रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभ सोग। निथावे कहो तुम थान बैठावो, दास अपने कहो भक्ति लावो। निमाने कहो जो दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुज्ञान। सगल पयान का पौ नस, जन अपने कह हर मन बस। पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान, तत् ज्ञान हर अमृत नाम। कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए। पैरो महला पंजवा, संत मंडल में हर मन वसै। संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में निर्मल दीत। संत संग हुए एक प्रीत, संत मंडल तहां का नाओ। पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ। संत मंडल में जन्म मरण रह, संत मंडल में जम किशु ना कह। संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी। संत मंडल का निचले आसन, संत मंडल में पाप विनाशन। संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा। संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुणतास। संत मंडल उठाकर विश्राम, नानक उत्पोत भगवान। पैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखे आप। तेह जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभ कृपा करै। तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम। जिस चीत आवै ते सदा सुख होवै, निकट ना आवै ता कह जाम रहाओ। जब एहो नासो तब किनै उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया। आपै मारा आप जीवालै, अपने भगत कहो सदा प्रतिपालै। सब किछ जानौ तिसकै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। दुख पंजनो ता कहै नाओ, सुख पावै तिसके गुण गाओ। सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण तन तुम रह पास। एहो जग तेरा सब तुझ ते आए, कर कृपा नानक सुख पाए। पैरो महला पंजवा, तेरी टेक रहा कल माहे। तेरी टेक तेरे गुण गाहे, तेरी टेक न पोहै काल। तेरी टेक बिन सह जंजाल, दीन दुनिया तेरी टेक। सब मै रविया साहब एक रहाओ। तेरी टेक करो आनंद, तेरी टेक जपो गुरमंत।
तेरी टेक तरिया पौ सागर राखण हार पूरा सुख सागर तेरी टेक नाही पौ कोए अंतर जामी साचा सोए तेरी टेक तेरा मन तान इहा उहा तू दीवान तेरी टेक तेरा प्रवासा सगल ते आवे प्रभ गुणतासा जप जप आनंद कर है तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा पहरा महला पंजवा प्रथमे छोड़ी पराई निंदा उतर गई सामन की चिंदा लोभ हो सब कीनो दूर परम बैसनो प्रापे खजूर ऐसो त्यागी विरला कोए हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ अहं बुद्ध का छोड़िया संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम ते आए हर हर हरे साज जना कै संग निस्तरे बैरी मीत होए सम्मान सर्व मैं पूर्ण भगवान प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया कर कृपा जिस राखे आप सोई भगत जपै नाम जाप मन प्रगास गुरते मत लई कहो नानक तां की पूरी पई पैरो महला पंजवां सुख नाही बहुते तन खाटे सुख नाही पेखे नित नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संगत पाईए वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ बंधन मात पिता सुतबंता बंधन कर्म तर्म हो करता बंधन काटन हार मन वसै तव सुख पावै निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निधान बेअंत अपार जिसनों कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई जो पावे त्यो रखो गुसाई पैरो महला पंजवा गुरमिल त्याग्यो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का नाम बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन भीतर सारे गुर भेटत मन पया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत जन मरण की मिटी जमत्रास साध संगत ऊंद कमल विगास गुण गावत निचल विश्राम पूर्ण होए सगले काम दुलभ देह आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास गिरास जपो हर हरी पैरव महला पंजवा सब ते उच्चा जाका नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ जिस सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख वसै मन आए सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गत होए रहाओ पुरख निरंजन सृजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शनहार भगत पाए सदा निस्तार साचा तन साची वड्याई गुर पूरे ते निचल मत पाई कर कृपा जिस राखन हारा ताका सगल मिटै अंधियारा पार ब्रह्म स्यों लागो ध्यान पूर्ण पूर रहो निर्वाण भ्रम पाओ मेट मिले गोपाल नानक कहो गुर पहे दयाल पैरो महला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटै कलेस सुख सहज निवास
ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਏ ਸੇਵ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਆਠ ਪਹਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗਾਓ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਰ ਧਿਆਏ ਭਗਤ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਲਿਵਲਾਏ। ਬਿਨਸੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਟੂਟੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਏ। ਪਹਿਰਾਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੈ ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਸੋਵੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮ ਗਤ ਚਾਹੈ ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰੈ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਹਰ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਰਹਾਓ। ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਕਹਾਂ ਸੁਚ ਸੈਲ ਮਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਹੋਮੈ ਮੈਲ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲ ਹਰ ਕੇ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਪੂਲ। ਬਿਨ ਖਾਏ ਬੂਝੈ ਨਹੀਂ ਭੂਖ ਰੋਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਦੁਖ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪਿਆ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਸਾਧ ਧਨ ਹਰ ਨਾਉ।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मैले दीन दयाल सदा कृपाल बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिनस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रख नहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक कौसदा प्रतपार पगजना के सास निहार मानस की कहो केतक बात जम तेरा खै दे कर हाथ निर्मल शोभा निर्म

सर्व मनोरथ पूर्ण करने, आठ पहर गावत भगवंत, सतगुर दीनो पूरा मंत। सो वड भागी जिस नाम प्यार, तिसकै संग तरै संसार रहाओ। सोई ज्ञानी जे सिमरै एक, सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक। सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पुतवंता जे आप पिछानी। गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रहन ते आया। टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरण रिदमाहे निवासा। कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा, सो जना आया प्रभ की सरना। आप पवित पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने। भैरो महला पंजवा, नाम लै तो किश बिघ ना लागै, नाम सुन तो जम दूरों भागै। नाम लै तो सब दुखै नास, नाम जप तो हर चरण निवास। निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ। हर सिमर तो किस चाख ना जो है, हर सिमर तो दैत देव ना पुहै। हर सिमर तो मोह मान ना बदै, हर सिमर तो गर्भ जोन ना रुदै। हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माया केला। जात अजात जपै जन कोए, जो जापै तिसकी गत होए। हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूर्ण रंग। नानक कहो प्रभ कृपा तार, सा सा सर देहो चितार। पैरो महला पंजवा, आपे सास्ते आपे भेद, आपे कटकट जाने भेद। ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूर्ण समरथ। प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुखिया राधाओ। दुश्मन दुख ना आवे नेरे रहाओ। आपे वन त्रिण त्रिपवन सार, जाकै सूत परोया संसार। आपे शिव शक्ति संजोगी, आप निर्बाणी आपे भोगी। जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए। सागर तरिए नाम कै रंग, गुण गावै नानक साध संग। मुकत भुगत जुगत वस जा कै, ऊणा नाही किस जनता कै। कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास सही जन तन। पहरो महला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद। अस्थित पय बिनसी सब चिंद, पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे। पार ब्रह्म वसिया मन आए, राम राम संत सदा सहाय। कर बाहर नाले परमेश्वर, रव रहा पूर्ण सब ठाए रहाओ। धन माल जोबन जुगत गोपाल, जी प्राण नित सुख प्रतपाल। अपने दास कौ दे राखे हाथ, निमख ना छोड़ै सद ही साथ। हर सा प्रीतम अवर ना कोए, सार संभाले साचा सोए। मात पिता सुतबंध नारायण, आद जुगाद भगत गुण गायण। तिसकी तार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर। नानक कै मन एहो प्रखार्थ, प्रभु हमारा सारे स्वार्थ। पहरो महला पंजवा, पह कौ पौ पड़िया सिमरत हर नाम। सगल ब्याद मिटी त्रिह गुण की, दास के होए पूर्ण काम रहाओ। हर के लोक सदा गुण गावै, तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांछे दिन राती, होए पुनीत धर्म राय जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा, साध संग मिटिया अभमान। ऐसे संत भेटै वडभागी, नानक तिनकै सत कुरबान।

नाव मेरे बंद पो नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखै उदास, कह कबीर हाँ ता को दास। नांगे आवन नांगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौनद मेरे, संपहेत कला तो तन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है हो संसार, एक हर निर्मल जाकांत नाम पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कहे कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दस दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचे हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सहिस्माना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कतै न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामै होए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हाँ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप पैरावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओह चेतना तरे। रहाओ जाओ निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जाओ सरदन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सरदन दोनों भाई, प्रभु की कला ना मिटी जाई। कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रेह मन सारिंग पानी। आबना भजस भजस का उपाई, आवै अंत ना भजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताओ ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवै जो नी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसै बुधसार, तह तुम मिलके करो विचार। ईतूत की सोजी पर कौन कर्म मेरा कर कर मरै। निज

सो सुरतान जो दोए सर तन बाहर जाता पीतर यान गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरतान शत्र सर तर जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उचरे मुसलमान का एक खुदाए कबीर का स्वामी रया सुमाए महल्ला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए ठाकर हमरा सदवो लंता सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहाओ अंतर देव न जन अंध भ्रम का मोहया पावे फंद ना पाथर बोले ना किश दे फोकट कर्म ने फल है सेव जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई कहत कबीर हाँ कहो पुकार समय देख सकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल में मीन माया के बेदे दीपक पतंग।

रहाओ पंखी मृग माया मैराते साक्रमाखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मैं पेला सिद्ध चौरासी माया मैं खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरजर चंदा तपे रखीसर माया मैं सूता माया मैं काल यार पंच दूता स्वान स्याल माया मैं राता बंतर जीते अर सिंघाता मांजार गाडर अर लुबरा बिरख मूल माया मैं परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा यार तार तेव कह कबीर जैसे उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवार आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ जब लग सिंह रह बन माहे तब लग बन फूल ही नाहे जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राये जीतो बूढ़े हार उतरे गुरप्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिवलाए सत्तर सह सलाह रह जाके सवा लाख पै कंबरता के सेख जो कही है कोट अठासी छपन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मजरस दूर मैल को पावे रहाओ ते तीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई दिल खल हल जाके जर दरू बानी छोड़क तेब करे सैतानी दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हमसरा पिखारी देव जवाब होए बजगारी दास कबीर तेरी पने समाना पेस्तन जीक राख रह माना सब कोई चलन कहत है उहां ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ आप आपका मर्म ना जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मान बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास खाई कोट ना परलप गारा ना जानो बैकुंठ द्वारा कह कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे क्यों लीजे गढ़ बंका पाई दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ पांच पचीस मोह मद मत्सर आडी प्रबल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रगराया काम केवारी दुख सुख दरवानी पापन दरवाजा क्रोध प्रधान।

चरण कमल चित रहो समाये रहाओ। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। कह कबीर को संग ना साथ, जल थल रखन है रघुनाथ। पहराओ कबीर जी अष्टपति कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आगम दुर्गम गढ़ रचियो बास, जामै जोत करे प्रगास। बिजली चमकै होय आनंद, जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद। एहो जियो राम नाम लिव लागै, जरा मरण छूटै परम भागै रहाओ। अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत, हम मैं गावन गावै गीत। अनहद शब्द होत चुनकार, जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल। खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया शांति त्रे खंडा। आगम्या गोचर रहया अभ्यंत, पार ना पावै को तरनी तरमंत। कदली पोहप तू प्रगास, राज पंकज मैं लियो निवास। द्वादश दाल अभ्यंतर मंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्ध मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास। उहां सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान। सो हंसो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप। अबरन बरन काम नहीं शाम, अवर न पाइये गुर की साम। टारी न टरे आवे न जाए, सुन सज मेरे उसमाए। मन मध्य जाने जे कोए, जो बोले सो आपै होए। जोत मंत्र मन असर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास। दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचाओ तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ। कोट चंद्र में करे चराक, सुरत तीसो जे वै पाक। नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार। कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थरे। समुंद कोट जा कै पानी हार, रुमावल कोटा ठारे पार। कोट कमेर पर है पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार। कोट क पापन बहरे, इंद्र कोट जाके सेवा करे। छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार। लट छुट्टी वरते बिकराल।

दूध पी आए भगत गर गया, ना मेहर का दर्शन भया। मैं बौरी मेरा राम पतार, रच रचता कहो करो सिंगार। भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग रहाओ। बाद विवाद कहूं स्यो न कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू कूर्ण चने बनावै, ज्यों राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किस कथन न जाई रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू भूम पै आर ना पावै। भणत नाम देव एक नाम निस्तार है, जे गुर मिले ते पार उतार है। हस्त खेलत ते

प्राण आधार मन, जियो प्राण सब तेरो तहनु रहाओ। जा कौ खोजै सुर नर देव, मुन जन सेख ना लह भेव। जा की गत मित कही ना जाए, घट घट घट घट रहा समाए। जाके भगत आनंद मैं, जाके भगत कहो नाही खै। जाके भगत कहो नाही पै, जाके भगत कहो सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रभ रहो समाए। नानक जाचा एक दान, कर कृपा मोहे देहो नाम। बसंत महला पंजवा, मिल पानी जो हरे बूट। सब कही ना जाए, घट घट घट घट रहा समाए। जाके भगत आनंद मैं, जाके भगत कहो नाही खै। जाके भगत कहो नाही पै, जाके भगत कहो सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रभ रहो समाए। नानक जाचा एक दान, कर कृपा मोहे देहो नाम। बसंत महला पंजवा, मिल पानी जो हरे बूट। साध संगत त्यों मैं छूट, जैसी दासे तीर मीर। तैसे उदाहरण गुरह पीर, तुम दाते प्रभ देनहार। निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ। जिसै प्राप्त साध संग, तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग। ते बंधन ते पय मुक्त, भगता राधै जुग जुगत। नेत्र संतोखे दर्स पेख, रसना गाए गुण अनेक। तृष्णा बूझी गुर प्रसाद, मन या गाना हरसै सुवाद। सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख परंपर देव। सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो एहो निदान। बसंत महला पंजवा, तुम बड़दाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे। दीने सगले भोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान। हाँ कछु ना जाना तेरी सार, तू कर गत मेरी प्रभ दयार रहाओ। जापना तापना कर्म कीत, आवै नाही कशूरीत। मन में राखो वासेक, नाम तेरे की तरह टेक। सर्व कला प्रभ तुम परवीन, अंत ना पावै जलै मीन। अगम अगम ऊंचे ते ऊच, हम थोरे तुम बहुत मूच। जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से तनी। जिन तू सेव्या सुखी से, संत सरन नानक परे। बसंत महला पंजवा, तिस तू सेव जिन तू किया, तिस आराध जिन जियो दिया। तिसका चाकर हो हे फिर डान ना लागे, तिसकी कर पोतदारी फिर दुख ना लागे। एवड भाग होए जिस प्राणी, सो पाए पर निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरथा, कशुना होई है पूर्ण अर्था। मानस सेवा खरी दुहेली, साध की सेवा सदा सुहेली। जे लोड़े सदा सुख पाई, साधु संगत गुरै बताई। ऊहा जपिए केवल नाम, साधु संगत पार ग्राम। सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान। हर कीर्तन में उत्तम धुना, नानक गुरमिल गाए गुना। बसंत महला पंजवा, जिस बोलत मुख पवित होए। जिस सिमरत निर्मल है सोए। जिस आराधे जम किश ना कहे, जिसकी सेवा सब किश लह। राम राम बोल राम राम, त्यागो मन के सगल काम रहाओ। जिसके तारे तरन आकाश, कट कट जिसका है प्रगास। जिस सिमरत पतत पुनीत होए, अंतकार फिर ना रोए। सगल धर्म है उत्तम धर्म, कर्म करतूत कै ऊपर कर्म। जिसको चाहे सुर नर देव, संत सवा की लगो सेव। आद पुरख जिसकी यादान, तिसको मिलिया हर निदान। जिसकी गतमित कही ना जाए, नानक जन हर हर ते आए। बसंत महला पंजवां,
ਮਨ ਤਨ ਭੀਤਰ ਲਾਗੀ ਪਿਆਸ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਆਸ, ਕਿਲੇ ਵਿਖ ਕਾਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਹਰਨਾਮ ਰੰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੰਤ ਬਨਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਉਰਧਾਰੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਜਸ ਸੁਨਾ ਰਹਾਉ, ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ, ਮੋਹਿਆ ਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਸਰਨ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਆਧਾਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਿਹ ਨਿਸਤਾਰ, ਭਵ ਖੰਡਨ ਦੁਖ ਨਾਸ ਦੇਵ।

अंतर्यामी प्रब दयाल अपने दास को नजर निहाल कर कृपा मोह देहो दान जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां राम रंग सब गए पाप राम जप तो कछ नहीं संताप। गोविंद जप तो समटे अंधेर हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारा राम रंग संत जना से।

कोई तुझे पछाण है, तेरिया भगतां कौ बलिहारा, थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रहाओ, तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता, भगत तेरा सोई तुद पावे, जिसनों तू रंग तरता, तू वडदाता तू वडदाना और नहीं को दूजा, तू समरथ स्वामी मेरा हो क्या जाना तेरी पूजा, तेरा महला गोचर मेरे प्यारे, बिखम तेरा है पाना, कहो नानक टह पया द्वारा, रख ले वो मुगदया जाना, बसंत हिंडोल महला पंजवा, मूल ना बुझे अपना सूजे, भरम व्यापी अहमनी, पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी, मोहे निस्तारो निर्गुणी रहाओ, उपत परलो प्रभते होवे ए बिचारी हर जनी, नाम प्रभु के जो रंग राते, कल मैं सुखिए से गनी, आवरियो पाओ ना को सूजे, नानक तरिये गुरबचनी, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, राग बसंत हिंडोल महला नामा, साधो एहो तन मिथ्या जानो, या पीतर जो राम बस्त है, साचो ताहे पछानो रहाओ, एहो जग है संपत सुपने की, देखा ऐडानो, संग त्यार है कछु ना चल है, ताहे कहां लपटानो, उस्तत निंदा दो पर हर, हर कीर्त और अनो, जन नानक सभी मैं पूर्ण, एक पुरख भगवानो, बसंत महला।

जोगी जंगम अर संन्यासो सभी पर डारिये फास। जेह जे हर को नाम समार ते पव सागर उतरे पार। जन नानक हर की शरण आए दीजे नाम रह गुण गाए। बसंत महला नावा माई मैं तन पायो हर नाम। मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान। लोभ मोए परसना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया। तृष्णा सकल बिनासी मनते नहीं सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै। कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहां बिसार्यो राम नाम। तन बिनसै जम स्यों परै काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार। तन दारा संपत ग्रह कै संग ना चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग। बसंत महला नावा कहां पूल्यो रे झूठे लोभ लाग। कछ बिगड़ियो नाहन अजहो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत। बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत। नाम बिसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोले चीता नीत जग स्यों तूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कर बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुध बुदा हेर। मात्र बूंद ते तार चक फेर सर्ब जोत नामै की चेर। सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर। नाम रता चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर। पत खोई बिखियंचल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए। जो किश कीनस प्रभर जाए पै माने निरपो मेरी माए। कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाचो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर सबदी बिखत्यास निवास। गुर सबदी बिखत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे। गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए। अतलुब्ध लुबानो बिख माए। नय असर दी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझ सो साच नाए। गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ। मन भूलो परमस पवर तार। बिल बिरथे चाहे बहु बेकार। मैंगल ज्यों फासस काम हार। कड़बंधन बांध्यो शीस मार। मन मुग्धो दादर भगतहीन दर प्रहट सरापी नाम बीन। तां कै जात ना पाती नाम लीन सब दुख सखाई गुण है बीन। मन चले न जाई ठाक राख बिन हर असराते पत ना साख। तू आपे सुरता आप राख
ਧਰ ਧਾਰਨ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਮਾਏ, ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ, ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਮਨ ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਸਮੈ ਏਕੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਭ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਭ ਤੇ ਸਿਰ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਅਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਦੇ ਨਾਹੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਮਾਤਾ ਗਾਹੇ, ਤੂੰ ਮੋਟੋ ਠਾਕਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੇ, ਮਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ, ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਜਿਸ ਨਰ ਹੋਏ, ਇਕ ਤਰਾ ਚੈ ਪਰ ਹਰ ਦੋਏ, ਦੂਰ ਦਰਦ ਮਾਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੈ ਏਕ ਸਮਾਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੇਤੀ ਬਿਲਾਏ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਚੀਨਸ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਰਹਾਉ ਬੇਦ ਵਖਾਣ ਕਹੈ ਇਕ ਕਹੀਐ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਕਿਨ ਲਹੀਐ, ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਜਿਨ ਜਾ ਕੀਆ, ਬਾਜ ਕਲਾ ਧਰ ਗਗਨ ਧਰੀਆ, ਏਕੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਨਿਰਾਲਮ ਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣ, ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਗੁਰਮਤ ਪੂਰਾ ਜੁਜੁਗ ਸੋਈ, ਅਨਹਦ ਰਾਤਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾ।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम न हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा नाहे, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करण हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै, हो हरिया पाई। कर्म लिखन तै पाई है, एह रुत सुहाई। वन त्रैण त्रिपौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुन ना ताई। पंजे बदे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सा मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रहै, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन त्याय न सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखा तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यो कतेब। शंकर मौल्या योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हम मेव, तपसी माते तब कह पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागे सुख देओ आर्यकूर, हनुमंत जागे तर लंकूर। शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहां पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़ने से नहीं काम। रहाओ संडे मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्यो रसाए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नक्स छेदियो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਧੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਆਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੋ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੋਣ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਯਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।

आया पागे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उत्तर सनाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगर बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही रह बसै रहाओ। जैसे अपने तनह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना

सुख का स्यो वर्ण सुनावत अंध बिनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाओ विषम पई पेख विषमादि पूर रहे कृपावत पियो अमृतो नाम अमोलक ज्यो चाख गुंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखे ओ बूझ ना आवत जावत जाको हृदय प्रगास पयो हर उवा की कही ना जाए कहावत आन्यो पाव जेते किश कहिय तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगटेयो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अवनाशी तुल्लो तुल्यो ना जावत कहो नानक अजर जिन जरिया तिस ही कहो बनयावत सारंग महला पंजवा बिखई दिन रैन इवही गुदार है गोविंद ना भजै अहं बुद्ध माता जन्म जुवै ज्यों हारै रहाओ नाम अमोला प्रीत ना तेस्यों पर निंदा हितकार है छापर बांध सवारै तरण को द्वारै पाप गजारै कालर पोट उठावै मुंडै अमृत मंते डारै ओडै बस्त्र काजर मैं परया बहुर बहुर फिर चारै काटै पेड़ डाल पर ठंडो खाए खाए मुस्कारै गिरो जाए रसातल परयो छिटी छिटी सिर पारै निर्वैरै संग वैर रचाए पहुंच न सकै गवारै कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सुधाखर जाकै हृदय वसिया तिन बेदै तत् पछानिया रहाओ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोक पिचारा जौ लौ हृदय नहीं प्रगासा तौ लोवंद अंधारा जैसे धरती साधै बहु बिद बिन बीजै नहीं जामै राम नाम बिन मुक्त ना हुई है तुटै नाही अभिमानै नीर बिलोवै अत श्रम पावै नैनू कैसे रीसै बिन गुर भेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसै खोजत खोजत है बिचार्यो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जाके लेख मथामा सारंग महला पंजवा अन दिन राम के गुण कहिए सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांशत फल लहिए रहाओ आवो संत प्राण सुखदाते सिमरै प्रभ अबनासी अनाथ नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो कटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड भागे कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समर्थ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो सर्व मैं ठाकर नानक सो प्रभ नेरा सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जाके संग पार ब्रह्म त्याई है उपदेश हमारी गत करन रहाओ दुख रोग पै सगल बिनासे जो आवे हर संत सरण आप जपै अवरै नाम जपावै वड़ समर्थ तारन तरन जा को मंत्र उतारै सहसा ऊने को सुभर भरन हर दासन की आग्या मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म वरण जाको भयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर रसै अगाने सह समाने मुक्ते नाही जात बरन गुरप्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उदरन सारंग महला पंजवा गायो री मैं गुणित मंगल गायो भले संजोग भले दिन अवसर जौ गोपाल रिजायो रहाओ संतै चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा साधै मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया भगतै दर्स देख नै नरंगा लोभ मोह टूटे भ्रम संगा कहो नानक सुख सहज आनंदा खोल पीत मिले परमानंदा सारंग महला पंजवा कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद कैसे कहो मोहे जी बेदनाई दर्शन प्यास प्रे प्रीत मनोहर मन ना रह बहुबिद उमकाई रहाओ
ਚਿਤਵਨ ਚਿਤਵਾ ਉਪਰੇ।

रहाओ। साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे, सफल देहे धन ओए जन्मे प्रभ कै संग रले। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध सब ऊपर साध पले, नानक दास धूर जन बंश है उधरै लाग पले। सारंग महला पंजवा, हर के नाम के जनकांखी, मन तन बचन एही सुख चाहत, प्रभ दर्श देखै कब आखी रहाओ। तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी, गत तेरी जाए ना लाखी, चरण कमल प्रीत मन बेदया, कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जन, एह बाणी रसना भाखी, जप राम नाम नानक निस्तरी है, होर दुतिया बिरथी साखी। सारंग महला पंजवा, माखी राम की तू माखी, जह दुर्गंध तहां तू बैसै, महा बिखिया मद चाखी रहाओ। कितै आसान तू टिकण ना पावै, एह बे देखी आखी, संता बिनतै कोई ना छड़िया, संत परे गोविंद की पाखी। जी जंत सगले तै मोहे, बिन संता किने ना लाखी, नानक दास हर कीर्तन राता, शब्द सुरत सच साखी। सारंग महला पंजवा, माई री काटी जमकी फास, हर हर जपत सर्व सुख पाए, बीचे ग्रस्त उदास रहाओ। कर कृपा लीने कर अपने, उपजी दर्श प्यास, संत संग मिल हर गुण गाए, बिनसी दुतिया आस। महा उद्यान अटवते अटवी ते काढे, मार्ग संत कयो, देख दर्श पाप सब नासे, हर नानक रतन लयो। सारंग महला पंजवा, माई री अरियो प्रेम की खोर, दर्शन रुचित प्यास मन सुंदर, सख्त ना कोई तोर रहाओ। प्राण मान पत पित सुत संबंधप, हर सर्वस तन मोर, त्रिग शरीर अष्ट बिष्टा क्रिम, बिन हर जानत होर, पयो कृपाल दीन दुख भंजन, परा प्रूब लाजोर। नानक सरन कृपा निध सागर, बिरसवान निहोर। सारंग महला पंजवा, नीकी राम की धुन सोए, चरण कमल अनूप स्वामी, जपत साधु होए रहाओ। चितवता गोपाल दर्शन, कलमला कड़ धोए, जन्म मरण बेकार अंकर, हर काट छाडे खोए, परा पूर्व जिसै लिखिया, बिरला पाए कोए। रमण गुण गोपाल करते, नानका सच जोए। सारंग महला पंजवा, हर के नाम की मत सार, हर विसार जो आन राचै, मिथन सब विस्थार रहाओ। साध संगम भज स्वामी, पाव होवत खार, चरणार बिंद बसाए हृदय, बहुर जन्म ना मार। कारा अनुग्रह राख लीने, एक नाम आधार, दिन रहन सिमरत सदा नानक, मुख उजल दरबार। सारंग महला पंजवा, मानी तू राम कै दरमानी, साध संग मिल हर गुण गाए, बिनसी सब अवमानी रहाओ। तार अनुग्रह अपनी कर लीनी, गुरमुख पूर ज्ञानी, सर्व सुख आनंद कनेरे, ठाकर दर्श ध्यानी। निकट वर्तन सास दा सुहागन, दै दे साई जानी, प्रे रंग रंग रती, नारायण नानक तिस कुरबानी। सारंग महला पंजवा, तो चरण आसरो ईस, तुम्हें पछानू साग तुम्हें संग, रखन हर तुम्हें जगदीश रहाओ। तू हमरो हम तुमरे कहिए, इत तुम ही राखे, तू बेअंत अपरंपर स्वामी, गुर कृपा कोई लख है। बिन बकने बिन कहन कहावनो, अंतर जामी जाने, जाको मेल लए, प्रभ नानक सेज अंदर गए माने। सारंग महला पंजवा, चौपदे कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर पाजयान करम बेकार, मान मोह ना बुझ तृष्णा, काल ग्रह संसार रहाओ। खात पीवत हस्त सोबत, औद बितिया सार, नरक उदर परमंत जल तो जमै किन्नी सार। पर द्रोह करत बेकार निंदा, पाप रत कर चार, बिना सतगुर बूझ नाही, ता मोह महा अंधार।
बेखट गौरी।

जैसा करै कहावै तैसा ऐसी बनी जरूरत, होवै लिंग चिंग न होवै ऐसी कही है सूरत, जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सो लहै गुर शब्दी मिलिया, सतगुर कै पाणे जो चलै हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई कर चानन बलिया, नानक बख्श में लाया न फिर गर्भ ना गलिया। श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली, ते मानस प्रधान, जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा। नौमी नेम सच जे करै, काम क्रोध तृष्णा उचरै। दसवीं दसे द्वार जे ठाकै, एकादशी एक कर जाने, द्वादशी पंच वसगत कर राखै, तौ नानक मन मानै। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजै। पौड़ी भुगत राजे रंग राय, संचय विखमाया, कर कर हेत वधाए दे पर दर्प चुराया। पुत्र कलत्र नाम विस है, बहु प्रीत लगाया, वेखद्या ही माया तुहे गई पछता पछताया। जम दर बदे मारिये नानक हर पाया। श्लोक महला पहला। ज्ञान में हूणा गावै गीत, भुखे मुला करे मसीत, मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कै मूल न लगिए पाए, काल खाए किश हथों दे, नानक राहो।

लेखा पढ़िए हर नाम फिर लेखना होई, पुछ न सके कोई हर दर सद ढोई। जम काल मिला दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई। नानक अनहद धुनी दर वज दे मिलया हर सो।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राए। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सभा उट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन ना जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता, भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अगन कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी, नव निध नाम निदान ग्रह तेरा, मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आग्या हे दीनी, बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै, मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगला देसा, कार्य सगल अरंभ्यो घर का, ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी, भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संतां जाए, खोज खोज मैं पाहुन मिलियो, भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पहे सुहेले, प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पहे आनंदा, गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै, आत्म काती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बो जोनी, टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघै कथ सागर, बिरथा कथत हम तरते। सेव बिरंच असुर सुर जेते, काल अग्न मैं जरते, नानक सरन चर

छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआं कै संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म भय दयाल बिनस गए बिखै जंजाल साध जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मलार महला पंजवा कन गरजत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन मलार महला पंजवा हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल रहाओ प्राण नाथा नाथ सखे दीन दर्द निवार हे समर्थ गम पूर्ण मोहे मया तार अंधकूप महापयान नानक पार उतार मलार महला पहला अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद चकवी नैन नींद न चाहे बिन

रहाओ सतगुर शब्दी पादर जान गुर कह तकिय सच तान नाम स्मारस रूढ़ी बाण थै पावे दरले स्पिराण ऊंडा बैसा एक लिवतार गुर कै शब्द नाम आधार ना जल डूंगर ना उची तार निज करवासा तह मगना चल नहार जित कर वसै तू है बिद जाने बीजो महल ना जापै सतगुर बाजो समझ ना होवी सब जग दग ब्याशा पै करण पलाव करै बिल लातो बिन गुर नाम ना जापै पल पंकज मैं नाम छड़ाए जे गुर शब्द सिंपै एक मूर्ख अंधे मुक्त गवार एक सतगुर कै पै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत धार जिन पीती तिस मुख द्वार नाम पै पाए हृदय वसाही गुर करनी सच बाणी इंद वरसै तरत सुहावी कट कट जोत समाणी कालर बीजस दुरमत ऐसी निगुरे की निशानी सतगुर बाजो कोर अंधारा डूब मोए बिन पानी जो किश कीनो सो प्रभु रिजाए जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए हुक्मे बांधा कार कमाए एक शब्द रचै सच समाए चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा चहो दिस नाम पतालं सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा कर्म मिलै बयालं जामन मरना दिसै सिर उबो खुदया निंद्रा कालं नानक नाम मिलै मन पावै साची नदर रसालं मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार ना जानै कंठे बैठी गुर शब्द पछानै तू कैसे आड़ फाथी जाल अलख ना जा चैर दै समाल रहाओ एक जी कै जिया खाही जल तरती बूढ़ी जल माही सर्व जी किए प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फास पड़ी अत पारी ऊंडना सांकै पंख पसारी रस चूगै मन मुख गावार फाती छूटै गुण ज्ञान विचार सतगुर सेव टूटै जमकाल हृदय साचा शब्द संभाल गुरमत साची।

मासो ही मासि उपजै मासो सबो साक। सतगुर मिलिया हुक्म बुझिया ताको आवै रास, आप छुटे न छुटिया नानक बचन विनाश। महला पहला। मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने। गेंडा मार होम जग किए देवत्या की बाणे, मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मान सखाने। फड़ कर लोका नो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे, नानक अंधे से क्यों कहिए नानक अंधे से ओ क्या कहिए, कहे न कहे आबूजे। अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही, मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मास ना खाही। स्त्री पुरख है जानिस मेला ओथे मंद कमाही, मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे। ज्ञान ध्यान का सूझै नाही चतर कहा वह पांडे। बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा, जी जंत सब मासो होए जी लया वासेरा। अपख पख पख तज छोड़ै अंध गुरु जिन केरा, मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे। ज्ञान ध्यान कछ सूझे नाही चतर कहा वै पांडे। मास पुराणी मास कते भी चह जुग मास कमाना, जज काज भी आहे सुहावे उथे मास समाना। स्त्री पुरख निपजै मासो पातशाह सुल्ताना, जे ओए दिसै नरक जांदे ता उनका दान ना लेना। देंदा

आतस दुनिया खुन का नाम खुदाया। पौड़ी नवी महला पंजवा सबो वरतै चलत चलत वखाणिया पार ब्रह्म परमेसर गुरमुख जाणिया। लथे सब विकार शब्द नी साणिया साधु संग उदार पहे निकाणिया। सिमर सिमर दा तार सब रंग माणिया प्रगट पया संसार मेहर शावाणिया। आपे बख्श मिलाए सद कुरबाणिया नानक लय मिलाए खसमै पहाणिया। श्लोक महला पहला। तन सो कागद कलम तन तन पांडा तन मस तन लेखारी नानका जिन नाम लिखाया सच महला पहला। आपे पट्टी कलम आप उपर लेख पे तू एको कहिए नानका दूजा काहे कु पौड़ी। तू आपे आप वरदा आप बणत बनाई तुझ बिन दूजा को नहीं तू रह समाई। तेरी गत में तू है जानदा तुझ कीमत पाई तू अलाखा गोचर अगम है गुरमुख दिखाई। अंतरा ज्ञान दुख परम है गुर ज्ञान गवाई जिस कृपा करे तिस मेल लै सो नाम ते आई। तू करता पुरख्या गम है रविया सब ठाई जित तू लाए सच्या तित को लगे नानक गुण गाई सुध। राग मलार बाणी भगत नाम देव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेवी ले गोपाल राया कोल निरंजन भगत दान दीजै जाचै संत जन रहाओ। जाचै घर दिग दिसै सराय चा बैकुंठ पवन चित्रसाला सबत लोग समान पूरी अले। जाचै घर लक्ष्मी कुवारी चंद सूरज दीवड़े कौतक काल बपड़ा कोटवाल सो करा सिरी। सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचै कर कुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डामड़ा जिन विश्व संसार राची ले। जाकै कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारखा ज्ञान पाखी ले। पाप पुन जाचै डांगिया द्वारै चित्रगुप्त लेखिया धर्म राय परली प्रतहार। सो ऐसा राजा श्री गोपाल जाचै कर गण गंधर्व रिखी बपड़े ढाडिया गवंत आचै। सर्व शास्त्र बहु रूपिया अन गरुआ आखाड़ा मंडलीक बोल बोले काछे। चौर ढूल जांचै है पवन चेरी सकत जीतले पवन अंड टूक जाकै पसमती। सो ऐसा राजा त्रिपवनपति जांचै कर कुरमा पाल सहसरफनी बासक सेज वालुआ। अठारह पार बनास्पति मालिनी छिनवै करोड़ी मेघमाला पानी हारिया। नख प्रसेव जाचै सुरसरी सप्त समुद जाकै कड़थली। एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिपवन धनी। जाचै कर निकट वर्ती अर्जन त्रू प्रहलाद अम्बरीक नारद निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहला। एते जी जाचै है करी सर्व व्यापक अंतर हरी। प्रणवै नाम देव ताची आन सगल भगत जाचै निशान मलार। मोको तू ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रमैया रहाओ। आलावंती हो प्रम जो है मुझ ऊपर सब कोपला सूद सूद कर मारो उठायो कहां करो बाप बीठला। मुए हुए जो मुक्त दे होंगे मुक्त ना जाने कोयला। ए पंडिया मोको टेढ़ कह तो तेरी पैज पछौंडी होएला। तू जो दयाल कृपाल कहियत है अद पुज पयो अपारला। फेर दिया देहरा नामे कहो पंडियन कहो पिछवारला। मलार बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग हृदय राम गोबिंद गुण सारंग। रहाओ सुरसरी सलल कृत बार नीरे संत जन करत नहीं पानंग। सुरा अपवित्र नात अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग। तार तार अपवित्र कर मानिया रे जैसे कागरा करत बिचारंग। भगत पागौत तो लिखिए तेह उपरे पूजिय कर नमस्कारंग। मेरी जात कुट बांडला ढोर टोवंता नितै बना।

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जा को भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौं बलबले हौं बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल। कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचे लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ। हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे हर जप जपे, जप जपो जगदीश, तुमरे जन राम जपे ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुमे कुम कुम जीस। हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करै जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मेल पज राम, बड हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदिर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम। सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम। कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ। खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईए हर ब्रह्म जोग हर पाईए, सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझे आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे, कट हर काट। कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रबला दो, तुर हो लिखे लीला दो रहाओ, बिख माया संच बहु चित बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सत गुरु गुर साधो, ज्यो शोहे पारस मनूर पए कंचन, त्यो पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमती सुधादो, ज्यो काष्ट संग लोहा बहु तरता, त्यो पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार वर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुर नानक, सो आप तरे कुर सगल तरा दो। कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ। तेरे जन त्यावै एक मन एक चित, ते साधु सुख पावै, पज हर हर नाम निधान, उस्तत करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनके हृदय तू स्वामी, ते सुख फल पावै, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे, जन नानक के हर तू।

मी स्वामी ने रो पेखत सुनत सबन कह संगे थोरे काज ब्रो कह फेरो रहाओ नाम बिना जे तो लपटायो कछु नहीं नाही कछ तेरो आगे दृष्ट आवत सब प्रगट इहा मोहयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवन हार दा तार बसेरो कहो नानक एक है पारो सौ बंधन काटन हार गुरमेरो कानड़ा महला पंजवा बिखै दल संतन तुमरै गाहयो तुमरी टेक भरोसा ठाकर शरण तुम्हारी आयो रहाओ जन्म जन्म के महाप्राहित दर्शन भेट मिटाहयो पयो प्रगास अन दुजियारा सहि समा समाहयो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहयो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीरै बिनसै मोह परम दुख पीरै रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत खत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेटत नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मनै सुख पाईऐ साजना मिल हर जस गाईऐ रहाओ कर कृपा प्रभुदय बसेरो चरण संदर के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जा सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रपरसन रसना हर हर भोजन तृपतानी अखियन को संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम कल मल दोग सगल मल हरसन पावन तावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूर्ण अबनासी आनो पाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जन अपने अंध घोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोह कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरी आ रहाओ अहू मत अन रात कुमित हित प्रीतम पेखत भ्रम लाह गरिया अनित व्यवहार आचार विदहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोबिंद त्याग आन लागे अमृतो डार भूम पागे बिखैरा स्यो आसक्त मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पावन शरण आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अवलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरा सर्ब सो गोबिंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूज हो नाम आराद गुर सतगुर चरनी लाग हर पाव मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहुविद खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की यह पुत्री जोरी क्या है कर्म करा कमास प्रभा पकर जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हाँ बल बल सत बल जास कानड़ा महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगते उदारण नाम प्रे तेरे नवनिद नाम निदान हर के रह हर रंग रंग रंग अनूपे रह काहे रे मन मोहे मगने रह नैनो देख सा दर्शे रह सो पावे जिस लिखत लले रह रहाओ सेवा सेवो सेवो साध संत चरने रह बांछो तूर पवित्र करे रह अठ सठ मज्जन मैल कटे रह सास सास ते आवो मुख नहीं मोरै
ਕਿਛ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੈ ਲਾਖ ਕਰੋਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਅੰਤ ਪਕਰੋਰੈ, ਮਨਸਾ

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवां, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ। आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना, दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना। हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन, प्रभ पय है कृपेन। मान मोह त्याग छोड़ो तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवा, रंगा रंग रंगन के रंगा, कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ। बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा, जल हेवत भूख हर नंगा। पूजा चार करत में लंगा, चक्कर कर्म तिलक खाटंगा। दर्शन भेटे बिन सतसंगा, हठ निगरह अत रहत बिटंगा। हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा, काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा। सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवां, कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिख बूझ गई गई मिल साध जना, पंच भागे चोर सहजे सुखैनो। हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रहाओ। जैसी करी प्रभ मोसियो मोसियो, ऐसी हो कैसे कराओ। हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई, पहले पै संत पाए। त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान थे रोके हरो। जित जंतन कर विचार, अनक दास कीर्त करे तुहारी। सोई मिलियो जो भाव तो, जन नानक ठाक रहो समाए। एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा महला पंजवां, कर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्यागी है गुमान मान, पेखता दयाल लाल। हां हां मन चरण रेन रहाओ। हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान, हृदय गोबिंद गाए। चरण कमल प्रीत लाए, दीन दयाल मोहना। कृपाल दया मया तार, नानक मांगे नाम दान। तज मोह परम सगल अभमान। कानड़ा महला पंजवां, प्रभ कहन मलन दहन लहन। गुर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ। तटन खटन जटन होमन, नाही दंड धार सुवाओ। जतन पांतन तपन भ्रमन, अनक कथन कथते नहीं थहा पाई ठाओ। सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ। कानड़ा महला पंजवां, करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पावन भगत पवछल, पै हरन तारन तरन रहाओ। नैन तिपते दर्श पेख, जस तोख सुनत करन। प्राण नाथ या नाथ दाते, दीन गोबिंद सरन। आस पूर्ण दुख बिनासन, गही ओट नानक हर चरण। कानड़ा महला पंजवां, चरण सरण दयाल ठाकर। आन नाही जाए, पतत पावन बिरद स्वामी। उधर ते हर त्याए रहाओ। संसार गार बिकार सागर, पतत मोह मान अंध। बिकल माया संग तंद, कर गह प्रभ आप काढ़ो। राख लियो गोबिंद राय, अनाथ नाथ सनाथ संतन। कोट पाप विनाश, मन दर्शन की प्यास। प्रभ पूर्ण गुणतास, कृपाल दयाल गोपाल नानक। हर रसना गुण गाए। कानड़ा महला पंजवां, वार वारो अनक डारो। सुख प्रे सुहाग पलक रात रहाओ। कनक मंदर पाठ सेज सखी, मोहे नाहे इन स्यों तात। मुक्त लाल अनक भोग, बिन नाम नानक हाथ। रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग सुख बिहात। कानड़ा महला पंजवां, अहं तोरो मुख जोरो। गुर गुर करत मन लोरो, प्रे प्रीत प्यारो मोरो रहाओ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਆਂਗਨ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਉ ਸੰਗ ਤੋਰੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨ ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸੋਰੋ ਛੁਟਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਸੋਰੋ ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹਿਰੋ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਮਨਾ ਹਰ ਜਾਪ ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰਤਾਪ ਰਹਾਉ ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗ ਬਪਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰੈ ਜਿਸੈ ਉਧਾਰੋ ਆਪ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮੋਹ ਪੈ ਪਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਜੀ ਸੰਤੋ ਜਾਤ ਜੀਉ ਬਲਿਹਾਰ ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਖੀ ਉਰਜ ਨਿਕਟ ਬਸਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰ ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਜਨਮ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਿਓ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਭਵ ਉਤਾਰ ਪਾਰ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੇ ਆਏ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੋ ਕਛੂ ਦਿਖਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ਰਹਾਓ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ ਕਥੂ ਨਾ ਜਾਏ ਕਰੈ ਬਸਾਏ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਇਹ ਚੋਲੈ ਚਰਨ ਲੁਭਾਏ ਅੰਤ ਜਾਏ ਥਾਂ ਥਨ ਆਏ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਰਸਕ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕਰ ਮਿਲਨ ਦੁਰਾਈ ਪਰਮਿਤ ਰੂਪਾ ਗਾਮਾ ਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ਰਹਾਓ ਕਹਿਣ ਭਵਨ ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਅਨਕ ਉਕਤ ਚਤਰਾਈ ਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਕਿਓ ਪਾਵਰੇ ਤਉ ਮਿਲਿਓ ਜਉ ਕਿਰਪਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ।

सत संगत हर मेल प्रभ, हम पापी संग तरा। जन नानक कहो हर बख्श लहो, हर तुठै मेल मिला। हर कृपा कर सुन बेनती, हम पापी कर्म तरा। महला चौथा। हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सतगुर मेल दयाल। गुर सेवा हर हम पाइया, हर होवा हर कृपाल। सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल। गुर तुठै नाम दृढ़ाया, हम किए शब्द निहाल। जन नानक अतुट तन पाया, हर नामा हर तन माल। पौड़ी हर तुम वड वड्डे, वड्डे वड़ ऊचे। सब ऊपर वड्डे वडोना, जो त्यावै हर अपरंपर। हर हर हर त्याय हरे ते होना। जो गावै सुनै तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना। तुम जैसे हर पुरख जाने, मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना। सब त्यावो आद सत्ते, जुगाद सत्ते, परतख सत्ते, सदा सदा सत्ते। जन नानक दास दसोना। श्लोक महला चौथा। हमरे हर जग जीवना, हर जप्यो हर गुरमंत। हर अगम दया, हर अगमा गोचर अगम हर। हर मिलिया आया चिंत, हर आपे घट घट वरतदा। हर आपे आपे अंत, हर आपे सब रस भोगदा। हर आपे कमला कंत, हर आपे पिखिया पाएदा। सब सृष्टि उपाई जी जंत, हर देवो दान दयाल प्रभ। हर मांगे हर जन संत, जन नानक के प्रभ आए मिल। हम गावे हर गुण संत। महला चौथा। हर प्रभ सज्जन नाम हर, मैं मंतन नाम शरीर। सब आसा गुरमुख पूरिया, जन नानक सुन हर तीर। पौड़ी हर ऊतम हरिया नाम है, हर पुरख निरंजन मौला। जो जप दे हर हर दिन सरात, तिन सेवे चरण नित कौला। नित सार समाले सब जी जंत, हर वसै निकट सब जौला। सो बूझै जिसिया बुझाए सी, जे सतगुर पुरख प्रभ सौला। सब गावो गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे, गोविंद हरे। गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा। सुत्या हर प्रभ चेत मानो, हर सह समाध लग समाए। जन नानक हर हर चाओ मन, गुर तुठा मेले माए। महला चौथा। हर एक सेती प्रहड़ी, हर एको मेरा चित। जन नानक एक आधार हर, प्रभ एक स्ते गत पत। पौड़ी पंचे शब्द वजे, मत गुरमत वडभागी अनहद वजया। आनंद मूल राम सब देखिया, गुर शब्दी गोविंद गजया। आद जुगाद वेस हर एको, मत गुरमत हर प्रभ भजया। हर देवो दान दयाल प्रभ, जन राखो हर प्रभ लजया। सब तन कहो गुर सतगुरु, गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कजया। श्लोक महला चौथा। भगत सरोवर उछलै, सुबर परे वहन। जिन्ना सतगुर मन्या, जन नानक वट भाग लहन। महला चौथा। हर हर नाम असंख हर, हर के गुण कथन ना जाए। हर हर अगम अगाध हर, जन कित बिद मिलै मिलाए। हर हर जस जपत जपंत, जन एक तिल नहीं कीमत पाए। जन नानक हर अगम प्रभ, हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम गोचर अगम हर, क्यों कर हर दर्शन पिखा। किश वखर होए सो वरनिया, तसरूप ना रिखा। जिस बुझाए आप बुझाए दे, सोई जन दिखा। सत संगत सत गुर चट साल है, जित हर गुण सिखा। तन तन सो रसना, तन कर तन सो पादा सतगुरु। जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक महला चौथा। हर हर नाम अमृत है, हर जपिया सतगुर पा।

जानो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प्या रापो कोई मिले प्रभ मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसत प्रभ तुमरे, जन नानक के प्रभ समर्थ थे, कल्याण महल्ला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुनथई, धर्म अर्थ सब काम मुख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवे हर जन, जिस वड भाग मथई, जै दरगे प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हम मैं मैल लग थई, गुर तार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी।

हर हर प्रभ हर जप्यो जगन नथी, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी। हम पाथर रख बुढ़ थई कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जान। और कोई निंद करे हर जन की, प्रभता का कहे एक तल नहीं मानै रहाओ। और सब त्याग सेवा कर अच्युत, जो सब ते ऊंच ठाकर भगवान है। हर सेवा ते काल जोहे ना सकै, चरणी आए पवै हर जान। जा कौ राख ले मेरा स्वामी, ता कौ समत दे पै कान। ता कौ कोई अपर ना सकै, जा की भगत मेरा प्रभ मान। हर के चो जो विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमख पछान। ता ते जन कौ आनंद भया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछतान। तुम हरदा ते समर्थ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दान। जन नानक कौ हर कृपा कर दीजै, सद बसै हृदय मुहे हर चरान। कल्याण महला चौथा, प्रभ की जय कृपा निदान। हम हर गुण गावेंगे, हम तुमरी करो नित्यास प्रभ, मोहे कब गल लावेंगे रहाओ। हम बारक मुक्त एआन पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल बिगार जगत पित पावेंगे। जो हर स्वामी तुम दे हो, सोई हम पावेंगे। मोहे दूजी नाही ठौर, जिस पै हम जावेंगे। जो हर पावे भगत तिन्ना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत में लाए ज्योत रल जावेंगे। हरे आपे होए कृपाल, आप लिवलावेंगे। जन नानक शरण द्वार, हर लाज रखावेंगे। शक्का एक कल्याण पोपाली महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, दुख निवारण नारायणे। सगल भगत जाचे सुख सागर, पावने दरन हर चिंता मणे रहाओ। दीन दयाल जगदीश दमोदर, हर अंतर जामी गोबिंदे। ते निरपो जिन श्री राम ते आया, गुरमत मुरार हर मुकंदे। जगदीशर चरण सरन जो आए, ते जन पावनित पार परे। भगत जना की पैज हर राखे, जन नानक आप हर कृपा करे। राग कल्याण महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हमारे एह कृपा की जय, आलम करंद चरण कमल स्यों। मन फेर फेर दी जय रहाओ, आन जला स्यों काज ना कछुए। हर बूंद चात्रक कौ दी जय, बिन मिलबे नाही संतोखा। पेख दर्शन नानक जी जय। कल्याण महला पंजवा, जाचक नाम जाचै जाचै। सर्वतार सर्व के नायक, सुख समूह के दाते रहाओ। केती केती मांगन मांगै, पावनिया सो पाइयै। सफल सफल सफल दर्शरे, परस परस गुण गाइयै। नानक तत तत स्यो मिलियै, हीरे हीर बिधाइयै। कल्याण महला पंजवा, मेरे लालन की शोभा। साध नवतन मन रंगी शोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, भगत दान जस मंगी। जोग ज्ञान ध्यान सेख नागै, सगल जपै तिरंगी। कहो नानक संतन बलिहारै, जो प्रभ के सद संगी। कल्याण महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तेरा मान हर हर मान, नैन बैन श्रवण सुनिए। अंग अंगे सुख प्राण रहाओ। ईत योत दह दिस रवेओ, मेरत ने समान। जत कथा तत पेखिए, हर पुरख पत प्रधान। साध संग प्रम पै मिटे, कथे नानक ब्रह्म ज्ञान। कल्याण महला पंजवा, गुण नाद तोनिया नंद बेद। कथत सुनत मुन जना, मिल संत मंडली रहाओ। ज्ञान ध्यान मान दान, मन रसक रसन नाम जपत। तै पाप खंडली, जोग जुगत ज्ञान भुगत। सुरत शब्द तत् बेते, जप तप अखंडली। ओत पोत मिल जोत नानक, कछु दुख ना डंडली।
कल्याण महला पंजवा कौन बेता की कहां करो तरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरो रहाओ बिशन महेश सिद्ध मुन इंद्रा कै दर्शन परो काहू पै राज काहू पै सुरगा कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाई है साधु चरण कहो कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे रहाओ नाम तारी शरण तेरी प्रभ दयाल टेक मेरी अनाथ दीन आसवंत नाम स्वामी मनै मंत तुझ बिना प्रभ किशु ना जानू सर्व युग मैं तुम पछानू हर मन बसे निस बसरो गोबिंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा मंत्र जापिए भगवान गुर पूरे सो प्रसन्न पए सदा सुख कल्याण रहाओ सर्व कार्य सिद्ध पए गाए गुण गोपाल मेर साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुखकाल कर कृपा प्रभ मेरिया करो दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव कल्याण महला पंजवा प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूर्ण परमेसर निहचल सच शब्द निशान रहाओ हर बिन आना कोई समर्थ तेरी आस तेरा मंतान सर्व कटा के दाते स्वामी देह सो पहरन खान सुरत मत चतराई सोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपन संग जमकाल तिस ना खावनो मुक्त जुगत अनक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुब्ध दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन पीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाओ काष्ट मैं ज्यो है बैसंतर मत संजम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सवाई तत गुरमत काढ़ लई जै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुई जै कृपा कृपा कृपा कर प्यारे गुरसबदी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सबदा हर रस की जै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा ली जै सतगुर आगम अगम है ठाकर पार सागर भगत करी जै कृपा कृपा कर दीन हम सारंग एक बूंद नाम मुख दी।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागनहारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंध ना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर करमी।

हर हर आप धरियो हर जन में जन नानक हर प्रभ एक फा। प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप बा। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुबदे बह दे कडबा। जप मनो राम नाम अर्धम्बा उपजंपो पाए न पाइए कतहूं। गुरपूरे हर प्रभ लभ रहाओ राम नाम रस राम रसायण। रस पिया गुरमत रसबा लोह मनूर कंचन मेर संगत। हर उर तारियो गुर हरबा हाँ मैं बिखिया नित लोभ लुभाने। पुत कलत मोहे लुभबा तिन पग संतन सेवे कभू। ते मनमुख पूंबर परबा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो। हम परे हार तुम सरन बा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी। जन नानक दास तुम नवा शका एक। प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मानो हर हर नाम निधान। हर दरगह पावे मान जिन जपया ते पार प्राण रहाओ। सुन मानो हर हर नाम कर ध्यान। सुन मानो हर कीर्त अठसठ मजान। सुन मन गुरमुख पावे मान जप मन परमेश्वर प्रधान। खिन खोवे पाप कोटान मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा विभास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया। पंच तत् रजोत निवाजिया। सहजा धरत बर्तन कौ पानी। निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते। हर सोग ते रहे निरारा ता तू पावे प्राण पते रहाओ। कापड़ भोग रस अनक पुंचाए। मात पिता कुटुंब सगल बनाए। रिजक समाहे जल थन मीत सो हर सेवो नीता नीत। तहां सखाई जै कोई ना होवे कोट अपराध एक खिन में तोवे। दात करे नहीं पछोतावे एका बख्स फिर बहुर ना बुलावे। किरत संजोगी पाया पाल साध संगत में बसे गोपाल। गुर मिले आए तुमरे द्वार जन नानक दर्शन देहो मरार। प्रभाती महला पंजवा प्रभ की सेवा जन की सोबा। काम क्रोध मिटे तसलोबा नाम तेरा जन कै पंडार। गुण गावे प्रभ दर्श प्यार तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई। काट जेवरी जन लिए छडाई रहाओ। जो जन दाता प्रभ कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग। जिस रस आया सोई जान पेख पेख मन में हैरान। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई निश्चलिया वै ना जाए अंदर प्रभ के हर गुण गाए। ता को करो सगल नमस्कार जा कै मन पूर्ण निरंकार। कर कृपा मोहे ठाकुर देवा नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा गुण गावत मन होए आनंद। आठ पैर सिमरो भगवंत जा कै सिमरन कलमल जाहे। तिस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ। जिन गुर कहया मार्ग सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाए।

ना जाने, भूख प्यासा जग पया तिप्त नहीं बिन सतगुर पाए, सहजे सहज मिलै सुख पाई, दरगह पैंदा जाए दरगह दाना बीना एक आपे, निर्मल गुर की बाणी आपे सुरता सच विचारस, आपे बूझे पर निर्वाणी, जल तरंग अग्नि पवन फुन त्रैमल जग त्यो पाया, ऐसा बल छल तिन को दिया हुक्मी ठाक रहाया, ऐसे जान विरले जग अंदर पर खजाना पाया, जात वर्ण ते पय अतीता ममता लोभ चुकाया, नाम रते तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया, नानक तिनके चरण पखल जिन्ना गुरमुख साचा पाया, प्रभाती महला तीजा विवास एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरप्रसादी वेख तू हर मंदिर तेरे नाल, हर मंदिर शब्द खोजी है हर नामो लिहो समाल, मन मेरे शब्द रपै रंग होए, सच्ची भगत सच्चा हर मंदिर प्रगटी साची सोए, रहाओ हर मंदिर एहो शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए, मन मुख मूल ना जाननी मानस हर मंदिर ना होए, हर मंदिर हर जियो साजिया रखिया हुक्म सवार, तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेटन हार, शब्द चीन सुख पाया सच्चा नाय प्यार, हर मंदिर शब्दे सोहना कंचन कोटिया पार, हर मंदिर एहो जगत है गुरबिन कोरे अंधार, दूजा पाव कर पूज दे मन मुख अंध गवार, जिथे लेखा मंगी है तिथे देह जात ना जाए, साच रते से उबरे दुखिए दूजे पाए, हर मंदिर में नाम निदान है ना बुझे मुग्ध गवार, गुर प्रसादी चीनिया हर राख्या उतार, गुर की बाणी गुर ते जाती जे शब्द रते रंग लाए, पवित्र पावन से जन निर्मल हर के नाम समाए, हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार, तिस विच शब्दा एक नाम गुरमुख लैन सवार, हर मंदिर मैं मन लोहट है मोहया दूजे पाए, पारस पेटे कंचन पया कीमत कही न जाए, हर मंदिर मैं हर वस शब्द निरंतर सोए, नानक गुरमुख बन जी है सच्चा शब्दा होए, प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे से जन जाग।

न शीतलं शीतरुतेण, नानक शीतलं सास्वजन है, मंत्रं राम राम नामं, ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है, ज्ञानं सम दुख सुखं, युक्त निर्मल निर्वैरण है, दयालं सर्वत्र जिया, पंच दुख विवर्जित है, भोजनं गोपाल कीर्तनं, अल्प माया जल कमल रहित है, उपदेशं सम्मित्र सत्र है, भगवंत भगत पावनी, पर निंदा न स्रोत श्रवणं, आप त्याग सगल रेण कै, खट लखन पूर्णं पुरख है, नानक नाम साध सवजन है, अजा पोगंत कंद मूलं, बसंते समीप केहर तत्रगते संसार नानक सोग हरखं व्यापते, छलं शद्रं कोट बेगनं, अपराधं किल बखमलं।

दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्वसुखण दुर्वचन भेद परमं साक्त फसनंत सुरजन अस्थतं सोगहरखं पै खीणंत निर्पव पै अटवियं महानगर वासं धर्म लखण प्रमया साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं हे अजित सूर संग्रामं अत बल नाबो मर्दन गण गंधर्व देव मानुखियं पस पंखी बेमोहन हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर हे कामं नरक विश्रामं बहु जोनी परमावण चित हरणं त्रैलोक गम्यं जप तपसील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण तव भय विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण हे कल मूल क्रोधं कदंच करनाना उपर्जते बिखयंत जीवं वस्यं करोत निरत्यं करोत जथा मरकट अनक शासन ताड़ंत जमदूत तव संगे अदमं नर दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच हिष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जिया अकरणं क्रोत अखाद खाद्यं असाज्यं साज समझिया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नर हर है हे जन्म मरण मूलं हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख वो बहुगण परम प्यान उद्यान रमणं महाविकट असाध रोगण वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगद गुरो हे संसार ताप हरण करना मैं सब दुख हरो हे शरण योग दयाल दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समाये समरंत नानक राम दामोदर माधव चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन साध संगेन तरणं नानक महासागर पैदुत्तर सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मं हस्त काया रख्या परमेश्वर आत्म रख्या गोपाल स्वामी तन चरण रख्या जगदीश्वर सर्व रख्या गुरदयाल पै दुख विनाशन भगत वछला नाथ नाथे शरण नान पुरखा चुत जैन कला तारियो आकाशं बैसंतरं काष्ट बेष्टं जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योतियं सासं शरीर तारणं जैन कला मात गर्भ प्रतिपालं नैच जंत जठर रोगण तेन कला अस्थंबं सरोवरं नानक नहश जंत तरंग तोयण गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन लब्ध्यं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतन मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कै सागरं लंघंत पिंगं तम प्रगास अंध कै साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे तिलकहीणं जथा विपरा अमरहीणं जथा राजन आवदहीणं जथा सूरा नानक धर्महीण तथा वैष्णव न शंखं न चक्रं न गदा न श्यामं आश्चर्य रूपं अरहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद बसंत साध हृदयं अचत बुझंत नानक वट भागी उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खर बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाध पंच तस्कर हीत मोह पै परम परमणं अहु फांस दीखण कठन पावक तो असाध कोरंग अगम तीर न लंगन पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरण कृपा कृपा करंत गोबिंद गोपाल सगल रोग खंडन साध संगेन गुण रमत नानक सरण पूर्ण परमेश्वर श्यामलं मद्र मानुखयं हृदयं पुं वैरण निवंत होवं।

मिथ्या चेतनं समंत स्वजन अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रत्यक्ष जंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते हरिचंत पुरख है कुटंब लीला अनित आसा विख्या विनोद परमंत परमंत जन्म हार्यो शरण नान करनामय हे जहबे हे रसगे मदर प्रिया तोयं सत हतंग परम बादंग अवर्त एथ सुध अक्षरण गोविंद मोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतंग बलवंत बलात्कारण चरण कमल नह भजंत तरण समान त्रिग जन्मन हे पपील का ग्रष्टे गोविंद सिमरन तोयंग धने नानक अनक बार नमो नम त्रिणंगता मेरंग सहकंता हरियंग बूडंगता तरियंग ऊनंगता परियंग अंधकार कोट सूर ओजारंग बिनवंत नानक हर गुर दयारंग ब्रह्मण संग उदरणंग ब्रह्म कर्म जे पूर्ण आत्मरतंग संसार गहंग ते नर नानक ने फल पर दर्भ हिरणंग बहु विघ्न करणंग उचरणंग सर्वजी कै लाओ लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म करत सासु करै मते समेव चरणं उदरणं पै दुतरै अनेक पातक हरणं नानक साध संगम ना संशय महला पंजवां गाथा एको अंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोहप सुगंधा परस मानुख देहं मलीणं मज्जा रुद्र दुर्गंधा नानक अथगर बेण अज्ञानन परमाणो पर जंत आकाश दीप लो से खंडन गशेण नैण पारेण नानक बिना साधु ना सिद्ध्यते जानो सत होवंतो मरनो दृष्टेण मिथ्या कीर्त साथ चलंथो पढ़ंत नानक साध संगेण माया चित परमेण इष्ट मित्रेख बांधवै लब्ध्यंग साध संगेण नानक सोख्य स्थानं गोपाल भजनं लब्ध्यंग साध संगेण नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैलागर संगेण निम बिरख से चंदन निकट बसंतो बांसो नानक अहं बुद्ध ना बोहते गाथा गुंफ गोपाल कथं मथं मान मर्दन हतं पंच सतरेण नानक हर बाणे परहारण बचन साध सुख पंथा लहंता बड़ कर्मण अरहंता जन्म मरणेन रमणंग नानक हर कीर्तन पत्र पुर जेण चढ़ियंग नह जड़ियंग पेड़ संपता नाम बेहूण बिखमता नानक बहंत जोन बसरो रैणी पावनी साध संगेण लबंतंग बड़ पागण हर नाम गुण रमणंग नानक संसार सागर ने व्यापण गाथा गूढ़ अपारंग समझण बिरला जन संसार काम तजनंग नानक गोविंद रमणंग साध संग में सुमंत्र साध बचना कोट दोख बिनासन हर चरण कमल ध्यानंग नानक कोल समूह उदाहरण सुंदर मंदर सैन जेण मद हर कीर्तन मुक्ते रमन गोविंद नानक लभद्यंग बड़ भागण हर लभदो मित्र सुमितो बिदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो अबज संग मिटंत सत पुत्र है सिमरताबर दै गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण मरणंग बिसरणंग गोविंद जीवणंग हर नाम त्यावण लबणंग साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण दसन बिहोन पुयंगंग
मंत्रंगारड़ी निवारं व्याद्योपन्न संतं नानक लब्ध कर्मण जथ कथ रमणं शरणं सर्वत्र जियण तथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुरदर्शन चरणार बिंद मन विद्यं सिद्ध्यं सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक पब्यं परा पूर्वण शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेण उदरण संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्या ते वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुले समूह सगले उदारं वडपागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहन लब्ध्यं साध संगेण नानक वडपागी पेटंत दर्शन सर्व दोख परं त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतन लब्धेण साध संगेण नानक मस्तक लिखण होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणं सुखैन बैन रत्नं रचनं कसुंबरंगण रोग सोग बेयोगं नानक सुख ना सुपन फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाथ कलम या गम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती उसत कहण ना जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा मैं बैस के कीर्त मैं कहा अर्पी सब सिंगार एहो जियो सब देवा आस प्यासी सेज सोकंत विशाई है हर हा मस्तक होवे भाग ता साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सब है के साजया सोले किए सिंगार के अंजन पाजया जे करे आवे कंत ता सब कुछ पाई है हर हा कंत है बाय सिंगार सब बिरथा जाई है जिस घर वसया कंत सावड भागणे तिस बनिया हब सिंगार साई सुहागणे हौ सुती होया चिंत मन आस पुराइया हर हां जा कर आया कंत ता सब किश पाईया पाईया आस आईती आस के आस पुराइया सतगुर पै दयाल ता पूरा पाईया मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हर हां सतगुर पै दयाल ता मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तरे हो संसार सतगुरु तराया मिटया आवा गौण जा पूरा पाया हर हां अमृत हर का नाम सतगुर दे पाया मेरे हाथ पद्म आंगन सुख बासना सखी मोरे कंठर तन पेख दुख नासना बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नव निद बसै जे सदा कर परतरे रावण जाहे सेई ताला जिया नित प्रत हिरै पर दर्ब शिदर कद ढाकी हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बने आकाश तले तर सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख जोहती खोजत फिरो उपदेश पियो कत पाईऐ हर हां जे मस्तक होवै भाग तां दर्श समाईऐ डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहिया बदो पुरख बिधातै तां तू सोहिया वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नाया रामदास सर चात्रक चित सुचित सो साजन चाहिए जे संग लागे प्राण तिसै को वाहिए बन बन फिरते उदास बूंद जल कारणे
ਹਰ ਹਾਂ ਤਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਣੇ। ਮਿਤ ਕਾ ਚੇਤਾ ਨੂੰ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਗਾਹਕ ਗੁਨੀਆ ਪਾਰ ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਨੀਐ। ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੈ ਰੰਗ ਘਨਾ, ਹਰ ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੋਰੈ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਾਵੈ ਸਚ ਤਨਾ। ਸੁਪਨੈ ਉਬੀ ਪਈ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਰਾਇਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਉ ਪਾਈਐ। ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨਹੀ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ। ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾਨਾ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਜਬ ਬਿਸਰੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕੱਟੀਐ। ਪੰਕਜ ਫਾਥੇ ਪੰਕ ਮਹਾਮਦ ਗੁੰਫਿਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਜਾਏ ਬਿਸਰ ਤੇ ਸੁੰਫਿਆ। ਹੈ ਕੋ ਐਸਾ ਮੀਤ ਜੇ ਤੋਰੈ ਬਿਖਮ ਗਾਂਠ, ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਧਰਨਾਥ ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਲੇ ਸਾਂਠ। ਤਾਵੋ ਦਸਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਣੇ, ਪੰਚ ਸਤਾਵੈ ਦੂਤ ਕਵਨ ਬਿਦ ਮਾਰਣੇ। ਤੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੀ ਕਾਤ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਖੁੱਟਈ, ਖਾਵੋ ਪੁੰਚੋ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਸਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਅਰਾਧ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਮਰ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਭਗਤ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਸਗਲੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਾ। ਜੀ ਕਰਨ ਜੈਕਾਰ ਨਿੰਦਕ ਮੋਏ ਪਚ, ਸਾਜਨ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ। ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਤੈ ਨਹੀਂ ਸੇਵੀਐ, ਝੂਠੇ ਰੰਗ ਖੁਆਰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਖੇਵੀਐ। ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਪੇਖ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਜੇ ਦਰ ਗਹਿ ਜਾਣਿਆ। ਕੀਨੇ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ਗਵਾਰ ਬੇਕਾਰ ਕਹਨ, ਮਹਾਂ ਦੁਰਗੰਧ ਤਵਾਸ ਸੱਠ ਕਾ ਸ਼ਾਰ ਤਨ। ਫਿਰ ਤੋ ਗਰਬ ਗੁਬਾਰ ਮਰਨ ਜਾਨੈ, ਹਰ ਹਾਂ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਪੇਖ ਕਾਹੇ ਸੱਚ ਮਾਨੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਪੂਜੈ ਔਧ ਤਿਸੈ ਕੌਣ ਰਾਖਈ, ਵੈਦਿਕ ਅਨਪਿਓ ਪਾਵ ਕਹਾਂ ਲਉ ਭਾਖਈ। ਏਕੋ ਚੇਤ ਗਵਾਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਆਵਈ, ਹਰ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤਨਸ਼ਾਰ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਵਈ। ਔਖਦ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਕ ਪੀਜਈ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਖਾਵੈ ਸੰਤ ਸਗਲ ਕਉ ਦੀਜਈ। ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਿਸੈ ਹੀ ਪਾਵਣੇ, ਹਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਜੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਵਣੇ। ਵੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ,

बाद समन जो इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंकन जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जानई मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्जो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे। लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यो खंड खंड करहार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यो सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगा दी सगल भगत ता को सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सब को हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिन मन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखो तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछ पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सब को कह बुरो न मन कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठताव ते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बडाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हों फिर कौतक ठा उठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हारो जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी
ਪਵਨ ਵਹਿ ਹਿਵਤਾਰ, ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ, ਅਵਰ ਬਿਲੋ ਬਨਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਮੁਸ ਮੁਸਲਾ ਵਹਿ ਹਾਟ, ਏ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਬਾਰੈ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ, ਕਰੈ ਜੋ ਬਹੁਤੈ ਮੀਤ, ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ, ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਆਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਕਬੀਰਾ, ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਟ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਕਬੀਰ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਾਂ ਕੋਠਾ ਕਰ ਰਾਮ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੈ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ, ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੈ ਕਰ ਰਮੁੜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਸਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ, ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕ ਸਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਹ ਕਰੋਰ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਵਨੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਪੋਏ ਗਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਕਬੀਰਾ ਤੁਹੀ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ, ਆਰਾਮ ਰਤਨ ਤਾ ਪਾਈਐ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸਰੀਰ। ਕਬੀਰ ਚੰਖ ਨਾ ਚੰਖੀਐ, ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਕੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਉਜਲ ਪੈਰੈ ਕਾਪਰੇ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਂਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰ ਜਰਾ, ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ, ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਰਪਾਰ। ਕਬੀਰ ਹਾਰਡ ਜਰੇ।

करते हुए सो होए। कबीर बैसनो की कुकर भली, सागत की बुरी माए, ओह नित सुने हर नाम जस, पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला, एहो हरियारा।

बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछै लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। कबीर हर दीपी अरी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिलै दोनों वर्ण गवाए। कबीर हर दीपी रतन हरै चून चिहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात वर्ण कुल जाए। कबीर मुक्त दो

कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पै निदान सब जा पूछे धर्म राए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, सरपन हो कै उतरे जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गधी हो कै उतरे पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी उपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जा मुकैये राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की जगतो लंगे जाए। बूढ़ा बंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जह जेवरी, तेह मत बंधो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सैनाहा, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैनाहा। कबीर नैन निहारो तुझ कहो श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो सदगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममता रे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल, चातरक जो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चक्री जो निस बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साक्त संग ना कीजिए दूर जाइए भाग, बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतियो जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कि नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहर तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार।

काटो। कबीर काल करंता अब है कारो, अब करता सोए ताल, पाछे कछु न होएगा जब सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंतिक देखिया जैसी तोई लाख, दिसे चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध कहो जम ना करे तिस्कार, जिन एहो जमुआ सिरजिया सो जपया परवदगार। कबीर कस्तूरी पया पवर पए सबदास, ज्यो ज्यो भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गहगज परयो कुटुंब कै कंठे रह गयो राम, आए परे धर्म राय के बीचे तू माताम। कबीर सागत ते सूकर पला राखे अच्छा गाओ, ओ सागत बपरा मर गया कोई ना लह नाओ। कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोर, चलती बार ना कश मिलियो लई लंगोटी तोर। कबीर बैसरो हुआ ता क्या पया माला मेली चार, बाहर कंचन बारहा पितर परी पंगार। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का तजमन का अपमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ

हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या पया सिरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए ऊज पवन कर कामनी शिखर तजा फहराए ताते पली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर पाला राम भगत जेठाए राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट तहां कबीर है मटकिया खोज तुम जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है ओड़ हीरा किसका बापरा पुजन रतन करोड़। कबीरा एका चंबो देखियो हीरा हट बिकाए बंजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां लोभ तह काल है जहां खिमा तह आप। कबीर माया तजीता क्या पया जो मान तजया नहीं जाए मान मुनि मुनमर गरे मान सबै को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही पोए मिल गया पर्या कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक अंधे एक न लाग गई जो बस बजाइए फूक। कबीर है गए बहन सगन कहन छत्रपति की नार ताश पटंतर ना पुजय हर जन की पनिहार। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी को मान ओ मांग सुवार बिखै कौ ओ सिमरै हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पई सतगुर बंदी तीर कबीर हीरा बन जया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जौहरी लेके मंड हाट जब ही पाई है पारखू तब हिरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरिय ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करो हर गया बहोरे बित। कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर एक अवकट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किसका लाज सी जबले तरह मसान। कबीर डूबे गोरे बापरे बहु लोगन की कान पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी नाना बिद को नाज दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दा जिन होत है निर्दावे रहे निसंक जो जानो निर्दावे रहे सो ग्रह इंद्र सो रंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा पी ना सके कोई नीर भाग बड़े तै पायो तू पर पियो कबीर। कबीर पर भाते तारे खिसे त्यों एहो खिसे शरीर ए दो अखर ना खिसे सो गह रहे कबीर। कबीर कोठी काठ की दैदस लागी आग पंडित जल मुए मूर्ख उबरे पाग। कबीर संसा दूर करो काग दे बिहाए बावन अखर सोध कै हर चरणी चितलाए। कबीर संत ना छड़े संतई जो कोट कमले असंत मलयागर भुजंगम बेड्यो ता शीतलता नात जंत। कबीर मन शीतल पाया ब्रह्म ज्ञान जिन जो आला जग जा रहा सो जन के उदक समान। कबीर सारी सृजन हार की जाने नाही कोए कह जाने अपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पौ परिया दिशा गई सब पूल ओरा घर पानी पया जाए मिलियो टलकूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बांधी देह दिवस चार को पेखना अंत खेह की खेह। कबीर सूरज चांद कै उदय पही सब देह गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पही सब खेह। जह अन पौ तह पह नहीं जह पौ तह हर नाहे
कहो कबीर विचार के संत सुनो मन माए। कबीर जिनो किशु जानिया नहीं तिन सुख नींद बिहाए, हमो जो बूझा बूझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारे और, लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सुहेल की कबीर चोट सुहेली सेल की, लागत ले ओ सास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ा साई ना बैरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या अज काबे जाए, कबीर जा की दिल साबत नहीं ता को कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए, दिल में साई प्रगटै बुझे बलंती नाए। कबीर जोरी किए जुल्म है कहता नाव हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए तब होएगो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन, हीरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटे मोह तन ताप, हर सोग दाजे नहीं तब हर आपे आप। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार, सोई राम सब कह है सोई कौतकहार। कबीर राम मैं राम कहो कहबे माहे बबेक, एका ने कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना सेवी है हर की सेवा नाहे, ते कर मरहट सारखे भूत बसे तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बावरा बैरा हुआ कान, पावो ते पिंगल पया मारिया सदगुरबान। कबीर सदगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया प्राकरे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत यो मन नहीं होए गई पठशार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी पूम में लाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुझसे लर परिया तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर, साई मुझ में क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जो

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हुके ना है, जिन एहो रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सी है, चिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ फिर लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाहकी, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ी, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफर फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर सातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहन क्यों करो सब कर देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बुझो नहीं घट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल कै ना खल पई ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै करे आन की आस, ते नर दोजग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जौ ग्रहो करे ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग, बैरागी बंधन करे
ਤਾਂ ਕੋ ਬੜੋ ਅਪਾਰ। ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੋਹ ਦੇ ਖਾਲੇ ਆਏ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਨੀ ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਜੋਲ ਕਹਿ ਗਲ ਲੱਗੈ ਤਾਏ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਆਏ

वर्ष एक हो फिर ओ किने नौ पर चौल आयो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुणों क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिब तू रखे तिव रहो पहर समाध सुना हो ज्ञान है आसन चढ़े आओ धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े आओ पै निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे आओ काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार गुर अमरदास सल पान तैं दल जितो इव युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै रव सस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जिने की आसा सतगुर से परम पद पायो अबनासी अब गाते आयो तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सतसंगत आत्म रंग चलूल पया जागया मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अन पौ उन्मान अकल्यव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कलुचरै तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सील सनहु फुटै सतगुर प्रमाण बिदन सिरयो जग जस्तूर बजायो गुर रामदास कलुचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनिध नाम निधान रिद सिद्ध ता की दासी सह सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो बनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कलुचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सरसै समायो आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कलुचरै तैं जगत उदाहरण पायो
जगतो धारण नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचर ते शब्द निशान मजायो से सदा सहे शावान संतोख सराय चाओ सदा सीर सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तार है शब्द रिद विचार है काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान बिख्याता एहन इस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दृद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म करम पूरै सतगुर पाई है जां की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है।

नल कव पार स्पर्श कच कंचना, नल कव पार स्पर्श कच कंचना होए, चंदना सुबास जास सिमरत अनतर, जाके देखत दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी, हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर, राज जोग तख्त दियन गुर रामदास, प्रथमे नानक चंद जग भयो आनंद, तारन मनुख जन कियो प्रगास, गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान, पंचपूत बस कीने जमत ना त्रास, गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत, अग्न देखत गत चरण कवल जास, सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न, राज जोग तख्त दियन गुर रामदास, अरड जिसे तारियो तरत अर व्योम, अर पवन ते नीर सर, अवर अनल अनाद कियो, सस रिख निस सूर दिन सैल, तरु फल फुल दियो, सुर नर सप्त समुन्दर के तारियो त्रि पवन जास, सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास, कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवणे सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणियो, लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै, पाहण मानक करै ज्ञान गुर कहो बिचारै, काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए, सतगुरु चरण जन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए, जाम गुरु है वल तने क्या गर्व दिजय, जाम गुरु है वल लख बाहे क्या किजय, जाम गुरु है वल ज्ञान अर ध्यान अनन पार, जाम गुरु है वल शब्द साखी सो सच्चे कार, जो गुरु गुरु अहनस जपै दास पट बेनत कह, जो गुरु नाम रिद में तरे सो जन्म मरण दो थेरे, गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे, गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अग्न कटे सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करहो गुरु सत कब नल कह, जिन गुरु ना देखियो नहो कियो ते अक्यथ संसार मह, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारन तरन समर्थ कल युग सुनत समाद शब्द जिसके रे, फुन दुख नास सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बस्त तेह नेरे, पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे, जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पी उस पे वन की, वंशत सिद्ध को बेद मिलायो पूर्ण पो मन ठौर बसो, रस बासन से ओ जो दहंग दिस्तायो, गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर विपास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, समर्थ गुरु सिर हथ तरियो गुर की नी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरियो निस बासर एक समान त्यान, सो नाम सुने सुत पान डरियो, पन दास सुवास जगतर गुरु की पारस पेट परस करियो, रामदास गुरु हर सत कियो समर्थ गुरु सिर हथ तरियो, अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज, भगत प्रहलाद की हर नाग सफारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत बस्तर दीन बहु साज, सो दामा अपदा ते राखिया गन का पड़त पूरे तह काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए राखो दास पाठ की लाज, झोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया, शब्द हर हर जपै नाम नाम निद अपै, रसन अहनस रसै सत कर जानिया, फुन प्रेम रंग पाई है गुरमुख है ते आई है, अन्न मार्ग तजो भजो।

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सतयुग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर तरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुरु नानक निकट बसै बनवारी तें लहना थाप जोत जगतारी, लहणै पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो हर नाम अखै निद चहो जुग गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरन सुख पावै परमानंद गुरमुख कईयंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप कोखण परणंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणंग, जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग वंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा एह आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावे प्रभाते करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रू जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसै दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਾਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉਂ

चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन गे अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनको मोह भया मन मद का। चौरासी लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुनारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बिचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन पे।

निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाइए परमार्थ सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने, शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथरा रसना रसै। श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया, त्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को। फुन त्रम तुजा फहरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कशु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं, पव सागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग, सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप, रहे लिव तार ना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर, सदा सब बेदर्त नागर। संत मराल करै कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर बे कौ, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरै फिरत सगल जुग, कब होक को उपावै आत्म प्रगास कौ। वेद बाणी सहत बरंच जस गावै जाको, शिव मुन गहे नात जात कबलास कौ। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास कौ। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास कौ। नाम निदान ध्यान अंतर्गत, तेज पुंज तेह लोग प्रगासे। देख दर्श पटक प्रम पजत, दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आलस मुह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर, साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत, अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो एहो तथ। ताहे कहा परवाह काहू की, जा कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहयो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई। अपने आप ही ओ पायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे। अब नासिया चाला जोनी संपाओ, पुरखोत में आपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो, जय जग में तैं हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी, एक मन तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी, अगम ज्ञान रस रस ओ ही ओ। गुर अमरदास करता

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिद पावै सोई रामदास गुरबल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड्यो पास ता ते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ता ते संगत सगन पाए पौ मान तुमली अगर प्रगट सुबास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जिह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ता ते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जीही कश कही ना जाई सोडी सरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख

एको ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीन कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन बिख्यन स्यों काहे रचियो निमख ना होहे उदास कहो नानक भज हर मना परै न जम की फास तरना को यों ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत बिरद पयो सूजै नहीं काल पहुंचियो आन कहो नानक नर बावरे क्यों ना पजै भगवान तन धारा संपत सगल जिन अपनी कर मान इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान पतते उदार।

सदा बस्त तुम साथ, तन तन जेह तो कौ दियो ता स्यो नेहो ना कीन, कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके ताम, कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए, कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना औध कटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो जाना।

कट कट में हर जू बस संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान उस्त निंदया नाहे जेह कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान हरख सोग जा कह नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे।

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तह काम। जेहबा गुण गोबिंद पजहो, करन सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना, परह न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। कहो नानक अपन तरै, और न लेत उधार। जो सुपना यार पेखना, ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने, प्राणी डोलत नीत। कोटन मैं नानक को, नारायण जह चीत। जैसे जलते बुद बुदा, उपजै बिन सह नीत। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु ना चेतई, मद माया कै अंद। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंद। जो सुख कौ चाहे सदा, शरण राम की ले है। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे है। माया कारण ता वही, मूर्ख लोग या जान। कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै, रूप राम तह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो, बिसरयो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाय होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रहयो निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यो छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई। चितवत रहो ठगौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्व करत है देह को बिन सैशन में मीत। जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कै नाहे मन। जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजित नहीं नित। नानक एह बिद हर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरै गुमान। नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन जोत ते हीन। कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे। नानक थेर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है
जान ले हो रे मीत कह नानक।

एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए, जो उपजियो सो बिरस है परों आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल, दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय, संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ, कहो नानक एह बिपत मैं टेक एक रघुनाथ, नाम रहयो साधु रहयो गुरु गोबिंद, कहो नानक एह जगत मैं किन जपयो गुरमंत, राम नाम उर मैं गहयो जा कै सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए, मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो, एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उतारो, तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशकिया लापे संग रागनी पांचौ थापे गोंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशको भारा खौ खटियो पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बाण औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतले और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावे पांचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावे पांचो संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचो चीनी बैरा तार गज तर के दारा जबली तर नट औ जल तारा पुन गावे शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा
ਖਸ਼ਟ ਰਾਗਿ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀਤੀਸ ਸਬੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ ਅਠਾਰਹਿ ਦਸ ਬੀਸ ਖਸ਼ਟ ਰਾਗਿ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀਤੀਸ ਸਬੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ ਅਠਾਰਹਿ ਦਸ ਬੀਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ है शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमर है कर नौन दयावै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पतकारा खा पाकाल पुरख वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाने दी सेवा करदिया अनेका भुल्लां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुल्लां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनियां पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहे

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवीऐ, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio.

असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो अमूल।

सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जोग जोग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले। गावन

तिनका भओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर ध्याया जी। जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी।

प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोट दी साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल।

हल पहला धात मिलै सुन धात कौ सिफती सिफत समाए लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिलै संतोखिया हर जप एक कै पाए पाई।

जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाउ। अंतर की गत जानिए गुर मिलिए शंख उतार, मोया जित कर जाइए तित जीम दया मर मार। अनहद शब्द सुहावणी।

पहरा रहे शिव शक्ति का मेल, त्रिगुण बंदी दे हुरी जो आया जग सो खेल। विजोगी दुख विछड़े मन मुख लह ना मेल, मन बैरागी घर वसै।

का नाम निदान, अंतर हर सरब रहया चूका मन अभिमान, हृदय कमल प्रगासया लागा सहज ध्यान, मन निर्मल हर रब रहया पाया दरगह मान। सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार, हों मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार, हों तिन कै बलिहारण जिन्ना नामे लगा प्यार, सही सुख

से निर्मले हों सद बलिहार जास। हृदय जिनका हर वसै तितकट है परगास। मन मेरे हर हर निर्मल त्याय। धुरमस्त

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

हर दरगाह पत खोए। हम मैं गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए। मेरे मन अहन सपूर रही नित आसा, सतगुर सेव मोह पर जलय कर ही माहे उदासा रहाव। गुरमुख कर्म कमावे बिगसै हर वैराग आनंद, अहिंस भगत

है बूझै नाहीं आन दिन दुख विहानी। मनमुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी, मन रे सदा भजहो हर शरणा।

आठ पहर प्रभु त्याए तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी शरणी पर मना जिस जे वडे अवर न कोए जिस सिमरत सुख होए कणा।